आज शाम 8:02 ते सुनोगे प्रोग्राम इन्फो टाइम्स। 9 बजे FM न्यूज हेडलाइंस। 30 पसंद दे हिंदी फिल्मी गीत वजन के रेडियो दे उत्ते 9:02 ते प्रोग्राम दिल चाहता है दे रही। रात 10 बजे सुनोगे शामे गजल प्रोग्राम। 10:30 बजे एक प्यार का नगमा है। 11 बजे तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते प्रसारण समा FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो FM रेनबो चैनल। सवेर दे 6:05 हो रहे ने। आओ सर्विन कर दे भगती संगीत दा प्रोग्राम वंदना।

इंसान कुछ भी करता ना, हमेशा उसनों कितना कितने डर होंगे कि वो देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है।

एफ एम मैन 102.7 MHz एफ एम रेनबो तुसे सुन रहे हो। सवेरे 7 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस।

और एक ऐसे तारे दे वांगू चमकण दी कोशिश करनी है ना, जो हमेशा हमेशा ही चमकदा रहिंदा है। और वो तारा जिहड़ा है हमेशा किन्नियां नू मोटिवेट करता है जिंदगी दे विच, हमेशा उस तारे दे वांग चमकण दी, उस तारे दे वांग बनण दी कोशिश में क्या करनी चाहिए है। पर इस कॉम्पीटिशन दे विच कदी ये ना भूलो कि तुसी की हो, साडी कैपेबिलिटी की है। कई बार ये हुंदा कि असी जो असी कर पाने हैं ना कर सकते हैं ओना भी नहीं कर पा रहे होंगे, और कई बार जिनी साड़ी सिर्फ लिमिट्स होंदिया ने उस तो वध असी करन दी कोशिश कर बैठते हैं। हाँ, अपनी लिमिट्स तो अगे वधना चाहिए, चंगे कम्मां ते लई अपनी लिमिट्स तो अगे वधना चाहिए, पर कई बार बहुत ज़्यादा असं अपने आप से इन्ना प्रेशर पा लें, अपने दिमाग से इन्नी टेंशन पा लें कि वो चीज़ा फिर गलत होनिया शुरू हो जाए, नैगेटिव होनिया शुरू हो जाए। इस जिंदगी दे विच सानू मौका इको वारी मिलता है जिंदगी नू खूबसूरत जे वधिया तरीके दे नाल जीवण दा, तो मैं क्या उस जिंदगी नू वधिया तरीके दे नाल होर भी जिया जा रहे और उसनू होर भी खूबसूरत बनाया जा। प्रोग्राम चल रहा जी थोड़ी अपनी आशी अंजलि दे नाल। गुड मॉर्निंग जलंधर और स्रोते लिसनर साडे नाल जुड़े हुए ने। और मैं क्या जी अज 20 मई है, 20 तरीक है, वैसे तो बहुत कुछ खास इस तरीक नू हुंदा है और अपने आप दे विच ही हर एक तरीक वखरा कुछ इतिहास लेके चलदी हुंदी है अपने नाल। सो 20 मई की जेकर तरीक की गल की जाए तो 20 मई जिहड़ी है भारत ते दुनिया के इतिहास विच वखरी अहमियत रखती है। आज़ादी दे गर्म दल दे नेता जिहड़े ने लाल बाल पाल, उन्हां दी अहम भूमिका रही है, जिहे दे विच जिहड़े लाल बाल पाल दी तिकड़ी दे विचों एक विपिन चंद्रपाल जी सीगे, उन्हां दी डैथ एनिवर्सरी है अज दे दिन, और 20 मई 1932 नू उन्हां दी डैथ होई सी। इस तों इलावा 20 मई 1900 नू हिंदी जगत दे प्रसिद्ध कवि जिहड़े ने सुमित्रा नंदन पंत जी, उन्हां दा जन्म होया सीगा। वीरू सिंह जी

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्था

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: मुफ्त कानूनी मदद टैली लॉ दी ऐप वेबसाइट www.tally-law.in या टोल फ्री नंबर 1-44-54 तो प्राप्त की जा सकती है।
1: लो भाई जी सरवाले दी गल करन लगे आ अखे जिन्नी टौर लाड़े दी हुंदी है ओनी ही टौर सरवाले दी हुंदी है सो आओ सुनते आ सरवाले बारे की।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें या ना दें, हमारी गाड़ी तो इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी।

एफ एम मैन 100.7 MHz, एफ एम रेनबो तुसी सुन रहे हो। सवेर दे 9 बज रहे ने। पेश ने हुण तक दियां एफ एम न्यूज हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम च इटली दे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नाल विचार चर्चा करनगे। दोने नेता संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 की समीक्षा भी करनगे। एक राष्ट्र एक चोण की संयुक्त संसदीय कमेटी ने कहा कि लोक सभा और विधानसभा चोणा इकट्ठे करवाने करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। सिविल हवाबाजी बारे डायरेक्टरेट जनरल ने इस साल के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी मगरों एयर इंडिया के बोइंग 7878 जहाज के ईंधन कंट्रोल स्विच की अगरेली जांच के हुक्म दिए ने। पछमी बंगाल सरकार ने औरतों के समाजिक आर्थिक उन्नति 3000 रुपए की महीनावार वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली अन्नपूर्णा योजना नू सूचित किया। पंजाब के राजपाल अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कहा लोड़वंद विद्यार्थियों नू विद्यक सहायता प्रदान करना राष्ट्र निर्माण वल एक शक्तिशाली कदम है।

आकाशवाणी जलंधर आकाशवाणी अमृतसर दे स्रोतियां दा निघा स्वागत है जी। और प्रोग्राम थोड़ा मेरा पंजाबियों का प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम दे विच गल्लां हुंदियां ने दिल तो दिल दियां, दिल तो दिल तक दियां आवाज़ां, दिल तो दिल तक दा टैलेंट जिहड़ा ना इत्थे आउंदा है जी। इस प्रोग्राम दे विच एक घंटे दे इस सफर दे विच बहुत सारियां गल्लां बातां, बहुत सारा टैलेंट जिहड़ा तुसीं मेरे तक पहुँचाउंदे और मैं पहुँचाउंदी हां बाकी लिसनर दोस्तां तक। और तुसीं की करना तुहानूं सब नूं पता ही है जी, क्योंकि मेरे बोलण तो पहलां ही 9855-10-27 नंबर ते किन्ने सारे मैसेजेस जिहड़े ने ना उह पहलां तो ही आ जांदे ने। पर लिसनर दोस्तां नूं इक गुजारिश है भाई, प्रोग्राम जदों शुरू हुंदा ना उदों मैसेजेस भेजिया करो। और जिस ना की होएगा कि तुसी भी जिस मैं क्या जिस टॉपिक दे असी गल करदे आ ना ओदे नाल जुड़े थोड़े विचार भी मेरी तक पहुंच जांदे ने। और अज जिवें कि असी गल वैसे तो देखो गर्मी की गल हो रही है और गर्मी जिहड़ी है बहुत ज़्यादा घैट आ रही है, सानू सब नू पता है। और नाल दी नाल जिहड़ा है इस गर्मी दे लई एडवाइजरीज जारी कर दित्तियां गईयां ने। हीट वेव चल रही है पंजाब दे विच, जलंधर दे विच भी खासा असर देखण नू मिल रहा है। अजिहे दे विच गलबात मैं क्या क्यों ना हुण इस गर्मी दे नाल जुड़ी हुई होए, क्योंकि असी देखिया ना असी जिस तरह गर्मी बढ़ रही है ओबियसली ए सी वगैरह का इस्तेमाल भी असी करना शुरू कर दिता होएगा। और ज़्यादा साढ़े घर कूलर पखे ए सी सब चलते हैं, ज़्यादा क्वानिटी के चलते हैं और हर एक कमरे के हर एक पखा कूलर चलना ही होंगे। सो जे ये होंगे कि एक तो बिजली ज़्यादा होंगी है यूज़, और दूसरी चीज़ यह है कि ये जो इलैक्ट्रिक प्रोडक्ट ने या फिर इलैक्ट्रॉनिक्स चीज़ा ने यह ज़्यादा हीट हो जाए ने। अजिहे दे विच मैं क्या क्यों ना अच थोड़े विचार जाने जान कि आखिरकार ये सब चीज़ों का जो असं इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा हीट हो जाती है तो उस तो बचाव के लिए की किया जा सकता है। तुसीं अपने विचार भेजो और असी करते हैं जी इस अज गलबात चर्चा करते हैं। और प्रोग्राम दे विच अज थोड़ी अपनी आर सी आर सी और बहुत सारिया गल्लां बातां, बहुत सारे गीत भी ने और गीतों तो इलावा जिहड़े थोड़े टैलेंट भी हैगा कोई तो मैं क्या भेज दो फटाफट भेज दो। और तुसी अपने विचार भी भेज सकते हो जो थोड़े दिल दे विच चल रहा, जो थोड़े दिमाग दे विच चल रहा, और उन्होंने सब विचारों मैं क्या जी मैं इत्थे थोड़े लिए प्ले करांगी। बाकी प्रोग्राम दे विच तुसी किवें शामिल होना थोनू पता है 9855-10-27 नंबर दे राही।

बह जा बह जा, दो घड़ियां बह जा और सुन लै उस बेचारी की गल। वो की कहना चाहनी है भाई, दुख दर्द होंगे ने, बड़िया सारिया गल्ला होंदिया ने, थोड़े 2 मिनट का कोल बह जाना ही मैं क्या बहुत कुछ उसनू टेंशन फ्री कर देगा। कई बार ना असी सोचते नहीं होंगे, कई बार असी इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते होंगे, पर गल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे रिश्ते दे विच। जेकर तुसी रिश्ते की खूबसूरती नू बनाई रखना चाहते हो ना, तो गलबात करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा कम्यूनीकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और सब तो बद कम्यूनीकेशन थोड़ा थोड़े पार्टनर के नाल होना जरूरी है। और अक्सर असी देखिए ना, इस रिश्ते दे विच बहुत सारी खटपट भी चलती रहती है, ज़्यादातर तो भांबड़ ही मचया रहा है। भंबड़ मचे की गल मतलब गर्मी ज़्यादा होंगी, आर्ग्यूमेंट असं ज़्यादा करते हैं और गल समझ की बजाय असी एक दूसरे नाल आर्ग्यूमेंट ज़्यादा कर लगते हैं। पर देखो उस ही आर्ग्यूमेंट के कम्यूनीकेशन गलबात छुपी हुई है, जदों तक असी एक दूसरे नाल गल नहीं करते तो उदों तक साढ़े मसले भी नहीं हल होंगे। और बहुत सारे मसले जड़े ने ना वो हुण इस गर्मी करके होर भी तखे पे होंदे ने। एक पासे असी गर्मी ना परेशान होंदे आ कि हाई गर्मी पसीना चो रहा होंदा है, दूसरे पासे जदों इस तरह की कोई गल हो जाती है ना तो अपने आप बंदा जड़ा है होर भी ज़्यादा उस गुस्से दे विच चला जाता है। तो तुसी की कोशिश करनी होंदी है भाई, माहौल ठंडा करन दी कोशिश करो, अपना भी दिमाग भी ठंडा होवे, घर का माहौल भी ठंडा होवे, तुहाडे आले दुआले का माहौल भी ठंडा होवे। मैं कि किन्नियां सारियां चीज़ां ने ना उस दे विच ही खूबसूरती जिहड़ी है ना वो लुकी होनी है। सो तुसीं भी की कहिंदे आ, कोशिश कर लो कि अपने आले दुआले नूं ठंडा करन दी की कोशिश कीती जा सके। सो गल हुई सीगी, गलबात यह हुई सीगी कि हुण जिंदा है असी देखिया कि असी एसी जां इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या दूसरियां चीज़ां का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सो जिहदे विच एक तां बिजली की खपत ज़्यादा होंदी है असी समझ आते हैं, और दूसरे पास ये कि असी ये भी देखिए कि इनवायरमेंट नू बहुत ज़्यादा इसका नुकसान भी हो रहा। सो असी उस इनवायरमेंट नू सेफ रखण दे लई की कर सकते हैं, एक कोशिश तो असी कर सकते हैं ना कि किस तरह उसनू सेफ रखा जाए। अजे विच मैं पंजाब की नहीं गल कराऊंगी, पंजाब की गल भी कराँगी पर बाहर दियाँ भी, जिदा महाराष्ट्र के एक ऐसी जड़ा है एक व्यक्ति दे वालों ऐसा एक इनिशिएटिव लिया गया जिस विच कि तापमान जेकर 45 डिग्री सैलसीयस तक का जिदा वध हो गया, गर्मी जिदा हुण हर दिन वध रही है, तो अजे कई ऐसे इलाके ने जिते तेज़ गर्मी लू दे करके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, खास तौर पर पिंडा खेतों के जो लोग काम करते हैं पिंडा रेंदे ने उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ का असर देखने को मिलता है। चुपचाप गर्मी नाल वो लड़ रहे होंगे ने, पर अजे दे विच कोई ऐसा व्यक्ति मैं क्या अगे आ जाए जिहड़ा कि इस एनवायरमेंट सेव करन दे लई कुछ अपने वालों एफर्ट कर ले, तो वो सोने के सुहागे वाली गल हो जाती है। और गल कर रही हाँ एक व्यक्ति दे वालों अपना ऐसे ही उसके वालों रूटीन सैट की गई, जो रस्ते होंगे ने ना असं अक्सर देखते हैं पिंडा वालू जाते रस्ते होंगे ने, कई रस्ते तो बहुत खूबसूरत होंगे ने, आसे पासे वड्डे वड्डे दरखत हरे भरे दरखत सानू देखने मिलते हैं, पर कई ऐसे एरियाज होंगे ने जिथे कि सुक्का रस्ता

0: बेहतर बनेगा। इस चीज़ दे विच भी उस व्यक्ति नू बहुत ज़्यादा मेक एक मोटिवेशन मिलती है उस बुरे वक्त दे विच भी अपने आने वाले कल नू सवारण दी। सो मैसेज आ गया जी साढ़े कोल, बहुत सारे मैसेजेस आए ने। आज पहला सुनते हैं की कहंदे ने लिसनर दोस्त।
1: हेलो मैम, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी।
1: मैडम मैं रेशम सिंह गिल, पिंड चकोला नेड़े सुल्तानपुर लोधी
0: जी।
1: मैडम अज तुसीं बहुत वधिया टॉपिक रख्या ते बड़े दोस्त सज्जन मित्र इस टॉपिक ते अपने विचार पेश करनगे, लेकिन मैं थोड़ा हट के ना कुछ तुहाडे नाल विचार साझा कर लगा
0: जी।
1: जिस तरह तुसीं गल कीती कि कोई टैलेंट है, मैडम मेरा तां मैनूं अपने दा भतीजे दा टैलेंट याद आ गया ना, छोटा हुंदा सी 10-11 साल दा। ओहदे च टैलेंट इह सी कि ओह डायलॉग बोलण दा बहुत शौक रखदा सीगा, पंजाबी फिल्मां दे डायलॉग बोलदा हुंदा सीगा। हुण ते वड्डा हो गया, हुण तां ओहदे बच्चे वी 5वीं-6वीं क्लासां च पढ़दे आ, जिथे 5-7, 2-4, 10 जने खड़े होंदे सी ना, उहनूं आवाज मारदे हुंदे लाडी डायलॉग सुणा, उसे वेले लगपना पतला जिहा हुंदा सी, सुक्का जिहा मेरे वर्गा, बड़े जोर नाल डायलॉग बोलना, ओहदे गले दीआं नाड़ां जिहड़ीआं फुल जांदीआं सी, इहने जोर नाल डायलॉग बोलदा हुंदा सी। ज्यादातर ओह इक्को ही डायलॉग बोलदा हुंदा सी, ओह किहड़ा मैं तुहानूं दस्सां, थाली विच रोटी रख के खाना जट दा कम नहीं बेबे, जट गंडा सिते रख के खाऊगा, बड़े जोर ना। बट मैनूं की याद आ, एक ना साडे लागे जगह बाबे दी, उत्थे ना भादों दे महीने वेला मेला लगदा हुंदा, ते मुंडे ने आवाज मारी स्टेज ते, कहे लाडी डायलॉग बोल स्टेज ते, दुनिया बहुत सी स्टेज ते कदी बोलिया नहीं, बोलण लगा कन्फ्यूज हो गया, शुरू कीता कहिंदा गंडा सिते रोटी रख के खाना जट दा कम नहीं बेबे, नहीं नहीं नहीं नहीं गलत हो गया यार, गलत हो गया, एदा नहीं सच, थाली विच रोटी रख के खाना जट दा कम नहीं बेबे, जट गंडा सिते रख के खाऊगा। सारे नूं सत श्री अकाल नाल ही बोलता, ते मेरे वल्लों वी तुहानूं सारे नूं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल।
0: थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। मैं क्या जी उन्होंने टैलेंट तुम अपना टैलेंट तुम उन्होंने नाम दस के मैं दस दिता साढ़े सारे लिसनर दोस्तों, पर चलो देखो जी थोड़ा भी टैलेंट साढ़े तक पहुँच गया और होर लिसनर दोस्त अपने विचार भी पेश कर रहे हैं। वैसे तुम विचार नहीं भेजे, तुम कह रहे थे बड़े लिसनर दोस्तों ने सू विचार भेज रहे हैं, पर चलो कोई गल नहीं, टैलेंट आ गया, टैलेंट का पता लग गया, सू इन्ना ही काफ़ी है। अगला मैसेज कहड़ा आया जी, आज पहले सुनते हैं।
2: आवाज दी दुनिया दे दोस्तो, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं सतनाम सिंह रखरा बागा पुराना था जी। प्यारी बेटी तुहानू भी प्यार भरी सत श्री अकाल। बेटी गर्मी बहुत वध रही है
0: जी,
2: ते रिश्तियां दे विच जो तुसीं दस रहे सी ओह भी गड़बड़ाहट बहुत हो रही है, यानी कि परिवार छोटे है ते रौला रप्पा ज्यादा होंदा है। पुराने समय दे विच जो सांझ हुंदी सी प्यार दी, वड्डे बजुर्ग हुंदे सी, एक घर दे विच तीन तीन जने होणे ते बहुत डर महसूस कीता जांदा सी, पर अज ओह डर मोबाइलां ने बिलकुल ही चक दित्ता है। हुण तां राज बच्चां दा हुंदा है, जिवें बच्चे कहिंदे आ उवें लगना पैंदा है, पर बच्चे आप बिलकुल नहीं डरदे, गर्मी की परवाह नहीं करते। जो कोई सियाणा बंदा कहिंदा भी है बेटे लस्सी पी लो, दही खा लो, ना ये चीज़ां दा पसंद ही नहीं, बर्गर पीजे जिन्हें मर्जी खवा दो इन्हां नूं, फिर कहिंदे जी मेदे च गर्मी पै गई, लीवर च नुक्स पै गया। इन्हां सारियां चीज़ां तों बचण वास्ते पिंडां दे विच माहौल हजे भी बहुत वधिया है, पिंडां दे विच तां इउं आ जी ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਲੱਗਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੱਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਏ ਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਟ ਕੱਢਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਖਤ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨੀਗਾ, ਏ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। गर्मी तो बचने लई ठंडा शरबत सत्तू वगैरह पियो, एक गिलास सत्तू का पियोगे तो 5 घंटे थानू गर्मी नहीं लगूगी, सत्तू दे विच इह असर हुंदा जी। अज बस इन्ना ही, दिल अपना पंजाबी, मैं सतनाम सिंह रखरा बागा पुराना तो जी, सत श्री अकाल दोस्तो।
0: थैंक यू सो मच जी सतनाम जी अपने विचार पेश करन दे लई, और वाकई ही बच्चियां दी चलदी अजकल सवेरे शुरू हुंदे ने और सोण तक सिर्फ उन्हां दी ही चलदी है, साडे घर

एफ एम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से तुहाडा स्वागत है जी। ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी एफ एम रेनबो। मैं हाँ रणदीप कौर। आओ सुनते हैं हूँ एफ एम न्यूज़ हेडलाइंस।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम च इटली दे प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नाल विचार चर्चा करनगे। दोनों नेता संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 की समीक्षा भी करनगे। एक राष्ट्र एक चोण की संयुक्त संसदीय कमेटी ने कहा लोक सभा अते विधानसभा चोणां इकट्ठे कराउण नाल करीब 7 लाख करोड़ की बचत हो सकती है। सिविल हवाबाजी बारे डायरैक्टोरेट जनरल ने इस साल के शुरू विच तकनीकी गड़बड़ी मगरों एयर इंडिया के बोइंग 787.8 जहाज़ के इंधन

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एक कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

कानूनी सेवावां अथॉरिटी एक्ट 1987 दी धारा 12 दे तहत योग नागरिक मुफ्त कानूनी मदद न्याबंधु मोबाइल ऐप ते www.probono-doj.in तों प्राप्त कर सकते हैं।

जी 10:56, लो जी 10:57 हो चुके ने, यानी कि स्टूडियो की घड़ी दे विच ते रह गया समा 3 मिनट का। तो 3 मिनट दे विच प्रोग्राम गीत बहार का आखिर का गीत तुहाडे रेडियो सैट्स ते, पर तुसी जाना किधरे नहीं क्योंकि इस तो बाद अगला प्रोग्राम जिहड़ा कि तुहाडा सब का फेवरेट वाला शो है पंजाबी तड़का, जल्द आवांगी मैं, पर उस तो पहले ये सुनदे हैं गीत।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते जी तुहाडा एक बार फिर तो स्वागत है एफएम बैंड जिहड़ा कि आल इंडिया रेडियो आकाशवाणी जलंधर तुसी ट्यून करके रखते हो जी। हाँ जी, स्टूडियो की कड़ी ते 11:03 हो चुके ने ते जी तुहाडा सब दा फेवरेट वाला शो जिहदा नाम है पंजाबी तड़का, जो कि फोन इन फरमाइशी है। ते जी तुसी नंबर डायल करना है 0181-43-4174 यानी 01812342174। ये नंबर्स वो नवे लिसनर्स लिए, क्योंकि जिन्हें साढ़े पुराने और पक्के वाले कॉलरस ने ना लिसनर्स ने, वो हमेशा अपने मोबाइल के नंबर सेव करके रखते हैं और उन्होंने तो वैसे ही उन्होंने मैमरी के ना ये नंबर फिट होया बैठा है। मतलब होर किसी का नंबर भुल जाए पर यह नंबर नहीं जो भुलता उन्होंने। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा जि सबर करो क्योंकि जी मैं थोड़ी प्यारी दोस्त रणदीप पहले तो प्ले करांगे जी अपना ही वाला, मतलब अपना एक फेवरेट सोंग जो कि रणजीत बावा की आवाज़ दे विच कोई भी हो सकता है। तो उस तो बाद तुहाड़ियां कॉल्स जिद्दां ही इत्थे पहुँचणगियां एफ एम स्टूडियो दे विच ते तुहाडे नाल होएगी गलबात। टॉपिक बड़ा अज का इंट्रस्टिंग है, हालांकि मैं उसकी गल जिहड़ी ना स्टार्टिंग दे विच कर चुकी हूँ, बस तुसी गैस करो कि अज किहड़े टॉपिक ते रणदीप तुहाडे नाल गल करेगी। सो मैं चूज़ करती हाँ जी रणजीत बावा दा गाना सुनहाण दिए। गाना सुनते सुनते तुसी भी नंबर डायल कर लेना है, तो नंबर वो याद करने ने सारे किन्ने कि तुहानू याद रहिंदे ने, आपां अज देखदे हाँ। लो जी

0: गीत केड़ा सुनोगे?
1: मनमोहन वारिस दा।
0: मनमोहन वारिस दा। संदीप जी, जदों अगली वार थोड़ी मेरे नाल गलबात होवे ते लंबी चौड़ी गल होनी चाहिए, पता लग जाए कि अमृतसर तो कॉल आई सी किसी शख्स दी ते बड़ियां प्यारियां गल्लां होईयां ने।
1: ठीक है, कोई
0: शुक्रिया सर कॉल करन दे लिए। और इन्हां दी फरमाइश है जी, मनमोहन वारिस दा गीत सुनाउण जा रहे हैं जी, पंजाबी वरसा।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे एह कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक तो बाद मुड़ तो अपने प्रोग्राम वल वधदे हां। प्रोग्राम दा नां है जी होम स्वीट होम। घर दे विच किन्नियां जरूरी चीज़ां होंदियां ते उस तो भी जरूरी है अज दे मौसम दे विच पानी दी बचत किवें कर सकदे हां जी। बिल्कुल, जिहड़ियां असीं रसोई दे विच अपणियां सब्जियां धोने हां, फल फ्रूट धोने हां, वह एक डोंगी या छोटी बाल्टी दे विच पानी ला लो, उहदे विच सारियां सब्जियां जदों भी असीं तड़का लाउणा ते बार बार असीं तड़का कटदे हां, सब्जी कटदे हां या फ्रूट खाने हुंदे आ ते असीं उहनूं धो लैंदे हां, वह पानी नूं बचा के असीं वह पानी भी असीं पौद्यां नूं दे सकदे हां। और जिवें कि हुण एसी हर कोई हर घर दे विच है ते एसी चलाउंदा है ते एसी दी पाइप जिथों पानी निकलदा है उहदे थल्ले भी असीं एक बाल्टी जरूर रखी हुंदी है। जेकर नहीं रखी हुंदी ते तुसीं उत्थे बाल्टी या बकट कोई भी रख सकदे हां, वह पानी भी वरतों दे विच लिआंदा जा सकदा है। उस पानी नूं वी असीं बूटियां दे विच पा सकदे हां या घर दी साफ सफाई दे विच पोचा लाउणा मोह पलाउणा है ते उदों उह पानी दी वरतों कर सकदे हां। इदां करके असी बहुता नहीं ते कुछ थोड़ा बहुता पानी ते बचाई सकते हैं जी। जरूर इदां करियो।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती।

हाँ जी, आपां सच्ची मौजां नूं आए हैं क्योंकि जी तुसीं ट्यून कीता 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है, FM बैंड ते जी प्रोग्राम चल रहा है होम स्वीट होम। बहुत सारियां गल्लां दे नाल नाल जेकर एक रैसपी भी हो जाए वह भी जिहड़ी छेती ईजी ते सौखी जी रैसपी जिहड़ी लोड़ पैण ते जल्द बन जाए। हाँ जी, हुण तुसीं पेन ते कापी जिहड़ा है वह पढ़ लो क्योंकि जी मैं रैसपी जिहड़ी दसन जा रही हूँ दी समगरी तुसीं नोट करनी है क्योंकि इस तों बिना तो रैसपी जिहड़ी है पूरी होनी नहीं। हाँ जी, मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुसीं पेन ते कापी पढ़ो, तुसीं मेरे वल देख रहे हो, मतलब तुसीं FM वल देख रहे हो कि रणदीप बोलना क्यों हट गई। मैं तां देख रही सी कि तुसीं कापी पेन फड़ लिया। चलो जी, लिखो तो तैयार हो जाओ अगली रैसपी बनाने लई जिहदा नाम है जी वैजीटेबल दलिया। वो जिहड़े ना दलिया खाना पसंद नहीं करते, जिन्हां नूं लगता है कि ये तो जी हाई बीमारां वाला खाना है, जदों असीं डॉक्टर्स कोल जाने तो कहिंदे कि तुसीं बीमार हो तो दलिया ते खिचड़ी खा लो, पर ना कभी कभी ये वाली चीज़ भी खानी चाहिए क्योंकि हैल्दी होंदी है तो डायजेस्ट छेती हो जाती है तो स्वाद भी लगती है। इनू थोड़ा जिहा होर स्वाद बनाने लई आपां इहदे च वक्रियां वक्रियां सब्जियां पा देनियां। उहदे वास्ते समगरी तुसीं नोट करनी है, दलिया जिहड़ा है वह एक कप लैना है, गुड़ वाला दलिया, पर मैं तो तुहानू सब्जी वाला दलिया कह रही सी। हाय हाय, की हो गया मैनू, की हो गया मैनू। खैर जी, अगला आपां कढ लिया है अपना पेज लफावा जितों मैं तुहानू हुण मिठे वाली नहीं लूण वाला दलिया जिहड़ा मैं तुहानू दसण जा रही हाँ। क्या हो रहा है, गर्मी गर्मी तो पानी की गल करके मैनू लगता है कि मैनू पानी की लोड़ पै गई है। लो जी, दलिया जिहड़ा कि एक कप तुसीं लैणा है, तेल जां देसी घिओ कभी कभी खा लेना चाहिए, देसी घ्यो जिहड़े नक बुल वटदे ने ना उन्होंने जरूर खवाओ देसी घ्यो। जीरा लो जी एक चम्मच, प्याज बरीक कटिया होया, अदरक एक चम्मच, हरी मिर्च बरीक कटी हुई, गाजर क्योंकि सीजनल सब्जियां जरूरी ने जिहड़ियां तुहानू पसंद ने, इहदे विच कद्दू टिंडे ते करेले नहीं जे पा देने क्योंकि तुहानू लगता होगा कि सीजनल सब्जियां तो हुण इहो ही ने। हा ना भी नहीं, इदां नहीं करना, दलिया बनाना है ओ मतलब उदा की खिचड़ी नहीं बनानी कि जिहड़ा बाद च देख के दिल ही ना करे कि असी खाना है। गाजर पा सकदे हो उहदे विच ते मटर पा सकदे हो, बीनस तुसी लै सकदे हो, है ना, पता है ना बीनस। हाँ जी हाँ जी, ओही वाले शिमला मिर्च जिहड़ी कि ना जिहदा फ्रैगनेंस स्मैल ते जिहड़ा फ्लेवर हुंदा है ना वह हर एक जिहड़ी डिश नूं ना बहुत वधिया बना दिंदा है। हल्दी, क्योंकि चिट्टे चिट्टे रंग दा दलिया सानूं वैसे ही स्वाद नहीं लगना, सो हल्दी लै लैनी असी अद्धा चम्मच। लाल मिर्च जेकर तुसी बड़ा स्पाइसी ते तिखा खाण दे शौकीन हो, धनिया पाउडर लै लो या फिर धनिया तुसी हरा कटिया होया उनू डेकोरेट करन दे लई भी लै सकदे हो। नमक अपने स्वाद अनुसार लैना है ते पानी 3 से 4 कप लैने ने क्योंकि दलिया जिहड़ा ना थोड़ा सख्त हुंदा है, इनू गलण लई ते थोड़ा जिहा समां लगदा है इनू सॉफ्ट होण लई। एक बार मैं फिर तो दस दिंदी हां जिहड़े इहदे इनग्रीडियंट ने, समगरी हैगी है दलिया, तुसी एक कप लै लैना है, साफ कर लेना इनू चंगी तरह, ये ना कले कले कण दाने जड़े होंगे ने इनू चंगी तरह देख लेना भी कोई चीज़ ना विच होवे, कोई रोड़ ना होवे। तेल या फिर घ्यो तुसी लै सकदे हो 2 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, प्याज 1 बरीक कटिया होया, अदरक 1 चम्मच, हरी मिर्च, गाजर 1, मटर जिन्ना कि तुसी पाउणा चाहुंदे हो, बीन्स लै सकदे हो, शिमला मिर्च लै सकदे हो, हल्दी लै सकदे हो, लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 चम्मच, नमक अपने स्वाद अनुसार।

गांव वालों, बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। कसम, सुनते रहिए 102.7 एफएम रेनबो।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उम्र 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक हुण 20 मई तों वधा के 30 मई 2026 कर दित्ती गई है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साडी वैबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानूं जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: देखकर तुमको यकीन होता है, देखकर तुमको यकीन होता है, कोई इतना भी हसीन होता है।

जब तुम नकाब चेहरे से हटा देती हो, जब तुम नकाब चेहरे से हटा देती हो, कसम से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती हो। 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते प्रोग्राम चल रहा जी मिड डे मेलोडीज़, यानी कि हिंदी गीतों का सफ़र।

0: इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की

0: ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं हैं, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना,

आहिस्ता चल ले जिंदगी, आहिस्ता चल ले जिंदगी, कुछ कर्ज चुकाने बाकी हैं, कुछ दर्द भी मिटाने बाकी हैं और कुछ फर्ज अभी भी निभाने बाकी हैं। जिंदगी दा कदी कदी सफ़र अजिहा होंदा है कि तुहानू ना कई अजिहियां राहां चुननियां पैंदियां ने, ते कई बार कई अजिहियां राहां तुहानू पसंद होण ते तुहानू उहनां नू छड्डना भी पैंदा है। ते ये सफ़र कदी हसीन भी हुंदा है ते कदी ये सफ़र जिहड़ा है थोड़ा जिहा उदास भी हो जाता है। पर FM 102.7 MHz से प्रोग्राम मिड डे मेलोडीज़ का सफ़र बहुत वधिया है।

नहीं, दुखाने के नहीं, दिल को खुश करने के लिए आओ, यानी कि हमें मैसेज भेजो। प्रोग्राम दिला शायर है मैं, और प्रोग्राम को आप इंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्त मोहित रूपक के साथ। वैसे बहुत सारे दोस्त ही लिख रहे हैं कि ने चिराबाद क्यों आयो, जनाब मैं रेगुलर ही आ रहे हैं वहाँ, बट शाम

0: वो कागज।
1: क्या बात है, खूबसूरत गजल। तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी प्रोग्राम आज दिल शायर है दे विच, दिल शायर है दे विच, एंड थोड़ा दोस्त मोहित रुबल थानू कर रहे हैं थोड़ा बहुत एंटरटेन, क्योंकि ज़्यादातर तुसी मैनू कर रहे हो। ओके जी, सो अगे होर मैसेज है। नमस्कार मोहित रुबल जी, भुपिंदर सिंह पिंड चीचा अमृतसर तो उलझन नज़म लिखी है, उलझन उत्ते बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिए। कि तेरी खातर मैं सूली चढ़न लई भी तैयार हाँ, तेरी खातर मैं सूली चढ़न लई भी तैयार हाँ, क्योंकि मैं तेनू करदा जानो वद के प्यार हाँ, पर तेरे रवैये तो बड़ा आवाजार हाँ, क्योंकि तू मेरे किसी गल नू करदी स्वीकार ना, इसे लई सो सोच के हो जांदा बीमार हाँ, क्योंकि मैं फसिया मोहित रुबल जी उलझन दे विचकार हाँ। नहीं छड़ सकता उन्हूं मैं असल विच, क्योंकि मैं उहदा ही दिलदार हाँ, भावें मैनू पता नहीं लग सकता किसे पार हाँ। पर जनाब अज थोटे है अधीन विचार है बई, तुहानू एक प्यार है, ना सोचो कि तुसी किसे पासो जी बीमार है, ना ही तुसी किसी चीज दे लई लाचार है, बस है जो दिल दी जो गल्लां ने तुहाडे दिल विच भी चंगियां अपार ने, ते चार क गल्लां मैं भी जोड़ दित्ती आ। ओके जी, लिखे नमस्कार मोहित रुबल सर जी, प्लीज पुट आउट माई नंबर इन दी। ओके ओके, कोई मैंने लगता नहीं है मैसेज, चलो मैं बाद चो तुहानू मैं रिवर्ट कर दवा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी मैसेज भेजने लई। अगे अपना कोल एक होर मैसेज आया है, मैसेज आया है सानू, आंखें खराब हो गया औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। क्या बात है, जीते जी अपने बाप को चश्मा ना ला कर दे सका, और मरने के बाद रखता है चश्मा संभाल कर। क्या बात है कि दुनिया में बिना बाप की इज्जत नहीं मिल सकती, दुनिया में बिना बाप की इज्जत नहीं मिल सकती, जाइए जहां भी राहत नहीं मिलती जन्नत के लिए, जन्नत के लिए सिर्फ नहीं है मन, अगर हो बाप नाराज तो जन्नत नहीं मिलती। क्या बात है सोनू मलेरकोटरा जी, थैंक यू सो मच सोनू जी, सोना लेके भेजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे एक और लिखे, उन्होंने लिखा है कि अच्छे इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो हर किसी को अपने जैसा समझ लेता है, उसे लगता है कि जैसा दिल उसका साफ है वैसे ही सब होंगे, लेकिन वक्त धीरे धीरे सिखा देता है कि दुनिया में चेहरे ज्यादा सच्चे दिखते हैं इरादे नहीं। क्या बात, थैंक यू सो मच जी सोनू मलेरकोटला जी। ते चौहान साहब अमृतसर तो एक और मैसेज भेज रहे ने, लिखा कि सपनों से भरी ये जिंदगी तुझसे है, हर खुशी हर चाहत अब बस तुझसे है, तेरे बिना ये दिल नहीं लगता कहीं, क्योंकि मेरी सारी दुनिया अब बस तुझसे है, तुझसे है, तुझसे है। एक और मैसेज आया जी, सत श्रीकाल मोहित रुबल जी, दिल शायर है दे विच बरविंदर सरा पिंड मोरजंड सिखा हनुमानगढ़ कि हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुम्हें गम में छोड़ देंगे, हम वो नहीं जो तुमसे नाता तोड़ देंगे, हम वो हैं जो तुम्हारी सांसे रुकते हम अपनी सांसे छोड़ देंगे। हाय हाय हाय हाय, और जनाब जितनी मर्जी गर्मी हो छत के ऊपर, और गर्मी कम करने के लिए हम छत पे पानी रोड़ देंगे, ठोको। ओके जी, जस्ट किडिंग जनाब, मैं अचानक तां इदा गर्मी की गल करती क्योंकि वाकई गर्मी बड़ी है, ख्याल रखियो सारे जाने अपना। एक मैसेज आया लिखे, अर्जन सिंह पिंड माले वाला, पहला प्यार सी ओ मेरा सिर्फ याद बन के रह गई, पहला प्यार सी ओ मेरा सिर्फ याद बन के रह गई, दिल पर आंदा

जी हाँ दोस्तों, इंजॉय कर रहे प्रोग्राम आज दिल। आज शायर है अपने दोस्त मोहित रुबल दे नाल। ते लो जी, मैं सिंपल इन्नी गल कही कि मैनू पुराने दोस्त द्वारा फिर मैसेज भेज दो, फिर सब दे मैसेज ने जिहड़े वो आ चुके ने। ओके जी, अगला मैसेज है जी, आर जी मोहित रुबल सर जी नमस्कार जी। इश्क भी तेरा इंतजार भी तेरा, इश्क भी तेरा इंतजार भी तेरा, दिल ने हर सांस में नाम लिखा तेरा, कि रातां जाग जाग कटदियां ने सजन, रातां जाग जाग कटदियां ने सजन, पर सुपनियां विच रोज आ जांदा चेहरा तेरा। क्या बात, वह किरण रूला जी छा गए, आप छा गए। आगे एक और मैसेज आ गया जी कि वो पहले हर बात पर रिएक्ट करता था, हर चीज एक्सप्लेन करता था। वैसे अजकल दे शायर जिहड़े हुंदे ना, जिहड़े पोएट्री लिखदे ने, उहनां दी महफिल दे विच मैं गया जिहनां नूं ओपन माइक कहा जांदा है, ते जिहड़े पुराने स्टाइल दे जिहड़े कवि ने, उहनां दा कवितावां पढ़न दा अंदाज जिहड़ा वखरा है। जिहड़े अजकल दे न्यू जनरेशन वाले पढ़दे ने, उह थोड़ा वखरे ढंग नाल पढ़दे ने। सो लिखी भी थोड़ी नवें तरीके दे नाल, तो मैं थोड़ा उस नवें तरीके नाल पढ़न दी कोशिश कर लगा जी। वो पहले हर बात पर रिएक्ट करता था, वो पहले हर बात पर रिएक्ट करता था, हर चीज एक्सप्लेन करता था। उसे लगता था कि अगर वो अपनी बात समझा देगा तो सब ठीक हो जाएगा, कि अगर वो

बात समझा देगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते। उन्हें बस बोलना होता है, जज करना होता है, और उसी दिन उसने बोलना कम कर दिया। लोगों ने कहा कि तुम बदल गए हो, पर सच तो ये था वो बदला नहीं था, बस उसे अपनी शांति को लोगों से ज्यादा जरूरी मान लिया था। और सच कहूं, हर चुप इंसान कमजोर नहीं होता, कुछ लोग बहुत कुछ समझ जाने के बाद खामोश हो जाते हैं। बस भावे मैं मजाक दे विच रीड किया, पर बहुत सोहना रीड किया। मैं तो तुम लिख के भेजना ही पैना मैं किदा दा रीड किया, ठीक है? एंड मैं खुद कह रहा मैं बहुत सोहना रीड किया। बाकी भेजने वाले भी कमाल दे दोस्त ने सानू, सोनू मलेरकोटला जी तो। एक और मैसेज भेजा सू चौहान साहब अमृतसर तो, आ कितने टलते ने लिखा दिला शायरे प्रोग्राम के हो सर मोहित रुबल जी, आप फिल्मी अंदाज में शायरी पढ़ रहे हो, मजा ही आ गया। लिखा कि चाहे तुम पूछ लो सुबह से या शाम से, तो पुराने स्टाइल वाले पुराने शायर कितना रीड कर देने कि चाहे तुम पूछ लो सुबह से या शाम से, ये धड़कने चलती हैं बस तेरे नाम से। क्या बात है चौहान साहब। भाई इदा दो मैसेज होर आ गए ने, ते ऐ ना होवे कि बाद च फिर मैं कहवा एक एक होर भेज दो। सो एक एक गीत इंजॉय कर लेने, गीत तो बाद दोबारा फिर इंजॉय करांगे, ठीक है जी।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जब सूरज तपता है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारे शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हमारा खास स्वास्थ्य कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता। तेज धूप, बढ़ता तापमान और शरीर में घटती ऊर्जा, गर्मियों का मौसम अपने साथ कई चुनौतियां लेकर आता है। लू लगना, डिहाइड्रेशन, त्वचा संबंधी समस्याएं, थकान और पाचन संबंधी परेशानियां, लेकिन आयुर्वेद में हर मौसम के अनुसार स्वस्थ रहने के प्रभावी उपाय बताए गए हैं। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस, यानी गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत सिंह दबास। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: थैंक यू मैडम।
1: श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज रेडियो डॉक्टर में हम बात करेंगे गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर अपने विशेषज्ञ से। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गर्मियों में सबसे आम स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी होती हैं।
2: मैडम, ऐसा है कि गर्मी का जो मौसम है, वो जो महीना चल रहा है अभी, मिड मई से मिड जुलाई तक का है। इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं और जो शरीर पर पड़ती हैं तो पानी को सोख लेती हैं। तो शरीर में पानी जब कम होगा तो खुश्की आएगी, डिहाइड्रेशन होगा, स्किन की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी और साथ में लू लगना, जैसे सनस्ट्रोक बोलते हैं, या उल्टी, दस्त, ये सब बीमारियां ऐसी आ जाती हैं। आदमी को खसरा वगैरह इस मौसम में ज़्यादा निकलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो कफ है शरीर का कम हो जाता है, जो शरीर की ताकत है वो घट जाती है, शरीर दुर्बल हो जाता है, और जो वात है वो बढ़ता है। तो वात फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे मौसम के हिसाब से, तो परेशानियाँ ऐसे बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए गर्मी में हमें खास ध्यान रखना चाहिए उससे बचने के लिए। तो उसकी प्रिकॉशन जैसे मैं आपको बतलाऊँगा कि भाई आप गर्मी में अगर बाहर जा रहे हैं तो घर पानी पी के जाएँ पहले, तो उसके बाद सिर पे कोई कपड़ा रखें और छाते का प्रयोग करें। छाता लोग आमतौर पर जो छाते मिलते हैं वो ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक जो है वो कलर जो है हीट को खींचता है अपनी तरफ, तो इसके लिए बेस्ट है कि आप वाइट कलर का छाता हो, जो वाइट है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। इसलिए जो कपड़े हमारे पहनने वाले हैं वो भी लाइट कलर के हों या वाइट हों, वो डार्क कलर के ना हों, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। और कम से कम गर्मियों में 2 बार स्नान भी करना चाहिए। ये ऐसी चीज़ें हैं। और खाने में आजकल जो सीजन की जो चीज़ें होती हैं, जैसे आजकल तरबूज आया हुआ है, नींबू है, खरबूजा है, ककड़ी है, ये ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ज़्यादा पकौड़े, समोसे, इस तरह की जो चीज़ें, बाज़ार का जो खाना उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार का खाने में आजकल आपको पता ही है जो तेल यूज़ हो रहा है वो बहुत घटिया किस्म का तेल यूज़ हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हम स्वयं अपने आप को बचाएंगे तभी बच पाएंगे। इसमें हर इंसान की अपनी स्वयं की जिम्मेवारी है। अब गर्मी तो यूं भी बढ़ रही है और ये गर्मी जो है, जैसे आजकल देख रहे हैं आप, सब कारों में एसी है, बसों में एसी है, ट्रेन एसी चल रही हैं, तो हीट तो बाहर आ रही है ना, हीट आ रही है। तो आम आदमी जिसके पास कार नहीं है, यानी स्कूटर पर है या थ्री व्हीलर में है या पैदल है, उसके लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उसको जाना तो उसी रोड पे है, रास्ते से है, और वहाँ पे इतनी बुरी हालत हो जाती है लोगों की, पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो कितनी दिक्कत होती है उन लोगों को, ये तो वो लोग बता सकते हैं, पर हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारा जो बेस है वो गाँव से है और हम ये समझते हैं कि कितनी दिक्कतें आती हैं, ये हम ही लोग जान सकते हैं, शहर के आदमी शायद इस बात को ना समझें।
1: गर्मियों में समस्याएं तो काफ़ी होती हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गर्मियों में शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखें, ये हम आपसे जानेंगे, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: जैसे कि रेडियो डॉक्टर में सर हम आपसे बात कर रहे थे कि गर्मियाँ बहुत हैं और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार।
1: देखिए गर्मी में संतुलन बनाने के लिए देखिए बॉडी का टेम्परेचर 98.4 डिग्री और जब बाहर हम जाते हैं आजकल देख रहे हैं टेम्परेचर 46 डिग्री से भी ऊपर चला गया, सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर आप बाहर जाएंगे और बाहर कोई एक्सरसाइज करेंगे या दौड़ लगाएंगे या कोई भी फिजिकल वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो नेचुरल आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए इस ऐसी गर्मी में हल्का व्यायाम करना चाहिए, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, इससे बॉडी का टेम्परेचर और बढ़ेगा। बाद में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको फीवर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा और दूसरी कई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं। इसलिए खाने पानी भी बार बार पीते रहिए आप, ये ज़रूरी है। बीच बीच में पानी पीजिए, नींबू का पानी डालकर नींबू पी सकते हैं आप दही की छाछ बना के शिकंजी बना के पी सकते हैं। ये चीज़ें लीजिए आप, ठंडी चीज़ें, संतरा ले सकते हैं आप, संतरे का जूस पी सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं। जो इस सीज़न में जो चीज़ें पैदा होती हैं जिस एरिया में आप रहते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, उस वो चीज़ें आप इस्तेमाल करें। जैसे आजकल ये खरबूजा है, तरबूज है, ये चीज़ें यहाँ पैदा हो रही हैं, ये सब गर्मी को कम करने के लिए है, तो आप इनका सेवन करिए आप। और कोई भी तली भुनी चीज़ें, पकौड़े समोसे या पराठे वराठे मत खाइए आप, ठीक है, मसाले गर्म मसाले वगैरह सेवन मत करिए आप, तो ये प्रिकॉशन रखिए आप।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो
2: शांति।
0: हेलो नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
0: जी, बताइए आपके क्या प्रश्न है।
2: हाँ, मेरा कहना है कि जैसे कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं और जाहिर है कि आजकल ग्रीष्म ऋतु है, हमारे आयुर्वेद में भी एक कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या।
1: बिल्कुल,
2: तो
1: है।

0: ग्रीष्म ऋतु में, जो ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, कृपया विस्तार से बताएं। ओम शांति।
1: देखिए ऐसा है, ये जो ग्रीष्म ऋतु है, ये जो महीना हमारा चल रहा है अभी मई, मिड मई से मिड जुलाई के बीच का है। इस टाइम जो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं और जल को सोखती हैं बॉडी के, उस बॉडी बॉडी नहीं जमीन पर भी जल होगा उसको भी सोख लेती हैं, तो आपको देखते हैं कि पानी की कमी हो जाती है। अब जो भी ठंडी चीज़ें हैं वो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ठंडी जगह में रहना चाहिए, खाना पीना ठंडा खाना चाहिए, कोई भी गर्म मसाले मिर्चें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आप जो सीजन की चीज़ें हैं, जैसे आपका मैंने बताया था आपको अभी तरबूज है पैदा हो रहा है वो खाइए आप, खरबूजा खाइए आप, नींबू का पानी पीजिए आप, दही की छाछ पीजिए आप, स्किंजी बना के पीजिए, तो ये ऐसी चीज़ें हैं। खस खस का जो है उसका शरबत पी सकते हैं आप, है ना, संतरा संतरे का जूस पी सकते हैं आप, अनार का जूस पी सकते हैं, ये चीज़ें लीजिए आप, तो इससे जो है आपको बॉडी आपकी ठीक रहेगी, संतुलन बना रहेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये ज़रूरी है कि आप बाहर धूप में ना जाएं, अवॉइड करें, जाना बहुत ज़रूरी हो तो पानी पी के जाएं, साथ में सिर पे कोई कपड़ा कवर ढकें उसको, छाते का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो दिन का टाइम है करीब 11 से लेकर 4 बजे तक का, इसमें तो बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश ही ना करें, और ख़ास तौर से बच्चे और जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए खास विशेष सावधानी रखनी चाहिए। और बोलिए आप क्या चाहते हैं।
2: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो,
2: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: हाँ, राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ। 48 वर्ष मेरी उम्र है और 70-75 केजी के आसपास मेरा वजन है। वो पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है और व्हाइट मेरी स्किन है, अंग्रेजों की होती ना फॉरनर की
2: जी,
3: तो उस खुद की मेरी स्किन है। तो सबसे पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून जी।
3: डॉक्टर साहब मेरे
2: हाइट कितनी है आपकी? डॉक्टर साहब
3: हाइट मेरी 6 फीट।
1: 6 फीट है, चलो ठीक है, फिर उस हिसाब से वेट तो ठीक है आपका, कोई ज्यादा कम तो नहीं है।
3: डॉक्टर साहब मेरे चार सवाल हैं, बड़े सीधे साधे भोले भाले।
1: हाँ बताइए।
3: पहला सवाल तो ये डॉक्टर साहब, चूंकि मेरी व्हाइट स्किन है तो लिहाजा मुझे गर्मी सूट वैसी नहीं करती।
1: हाँ बिल्कुल।
3: चूंकि मेरी पित्त प्रवृत्ति है
1: जी हाँ,
3: तो डॉक्टर साहब हो ये रहा है कि मेरे को लीवर के आसपास काफी ना इन दिनों गर्मी जलन गैस बहुत बन रही है लीवर के आसपास।
1: हाँ जी हाँ।
3: तो मेरी जो डाइट वो 4 फुलके होती थी, एक दो फुलके ही खा पा रहा हूँ। अब अगर मैं इनो पीऊँ पानी में मिला के या लिमका पीता हूँ तो मुझे रिलीफ मिल रहा है, पर टेम्पोरेरी परमानेंट नहीं।
1: हाँ जी।
3: तो इसके लिए मैं क्या करूँ? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे श्वसन एलर्जी भी है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? घरेलू स्तर पर अगर आपके पास आते तो क्या करना पड़ेगा? तीसरा सवाल कि मुझे निद्रा की भी प्रॉब्लम है, तो मैं गर्मी मुझे और भी सूट नहीं कर रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और चौथा आखिरी सवाल कि मुझे लीवर ये थायराइड या टॉन्सिल में से ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे को बोलने प्रॉब्लम, मतलब गले में ड्राइनेस, आंखों में ड्राइनेस। और एक छोटा सा सवाल और था कि गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ रही है तो आंखों में गर्मी जलन होती है, सीधी सी धूप पड़ती है, आंखों पे गर्म हवाएं चलती हैं, तो आयुर्वेदा कंपनी ने आरोग्य नेत्रम अमर नेत्रम दवा निकाली है, तो अगर इसको आंखों में डालें तो उसके साइड इफेक्ट तो नहीं है? ये 5 सवाल है, प्लीज गाइड करें, मेरी बड़ी मेहरबानी होगी।
1: ठीक है, देखिए ऐसा है, स्किन आपकी वाइट है, ठीक है, और आपको जो गर्मी है वो शूट नहीं करती। आपकी एज कितनी है?
2: 48
1: है। और काम क्या करते हैं आप?
2: काम नहीं बताया था इन्होंने, कहा था 48 वर्ष उम्र है।
1: काम
2: 70-75।
1: वर्क क्या करते हैं सर आप?
2: सर लाइन कट गई है। हाँ आप बता दीजिए वैसे ही।
1: अच्छा, तो ये जो है इसके लिए तो वही है कि गर्मी है ज़्यादा, मौसम सीजन भी गर्म का है, आपकी बॉडी में वैसे ही गर्मी है, तो नेचुरल खाने पीने का अपना पथ्य का प्रयोग सही करें आप, और पथ्य का सेवन ना करें आप, दूसरा लाइफस्टाइल अपना ठीक रखें, गर्मी में बाहर ना जाएं, अंदर रहें, ठंडे स्थान पर जाएं, अगर आपके पास अच्छी हो तो आप किसी भी ठंडे एरिया में शिफ्ट कर जाएं गर्मी के टाइम पे, तो सारी चीज़ें इस तरीके की हैं। लीवर है आपका, भूख जैसे कम लग रही है तो भूख के लिए आप थोड़ा सा नमक और जो है आपका थोड़ा सा काला नमक डाल लें, थोड़ा सा अजवाइन डाल लें, थोड़ा अदरक डाल लें, उसको नींबू में भिगो कर रखें, उसको खाएं तो आपकी भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ऐसी छोटी चीज़ें हैं ना, ये लीवर के लिए आपको जो है लीवर के लिए कई दवाइयाँ भी आती हैं, वैसे तो चिरायता वगैरह अच्छा लीवर में काम करता है, आप ले सकते हो, उसको लें आप, ठीक है ना। और पानी बार बार पीते रहें आप, ये बहुत ज़रूरी है। नींबू आपको शूट करता है, नींबू की स्किंजी लें, छाछ दही की छाछ

0: कि जो है लस्सी बना कर लें, आप संतरा शूट करता है संतरे का जूस पी लें, अनार का जूस पी सकते हैं, आप ये चीज़ें लीजिए आप सारी। थायराइड के लिए जो है शीतली प्राणायाम करेंगे आपको गले के रोगों में फ़ायदा करेगा, शीतली प्राणायाम करें उससे भी आपको आपकी ठंडक रहेगी, गर्मी कम लगेगी आपको।
1: और उन्होंने कहा था कि उनको एलर्जी हो जाती है।
0: देखिए एलर्जी किस चीज़ से होती है ये तो आपको देखना पड़ेगा, अभी क्या खाने से एलर्जी हो रही है उसको अवॉइड करना पड़ेगा।
1: अच्छा, और एक उन्होंने कहा था कि उनको निंद्रा की भी प्रॉब्लम है, कि जैसे गर्मी बहुत है उनको नींद नहीं आ रही है कुछ।
0: देखिए आप ना अगर आप कैपेबल है तो एसी लगाइए अपना, और थोड़ा खाना खाने के बाद में आप आधा घंटा घूमिए, थकावट होगी तो नींद भी आ जाएगी।
1: और साथ में कह रहे थे कि उनको ड्राइनेस बहुत फील होती है, चाहे गले में भी आँखों में भी, गर्मी तो है
0: तो गर्मी में जो ड्राइनेस होती है आप
1: उसके लिए क्या करें?
0: गाय का जो है गाय का प्योर घी जो बाज़ार में गाय का घी मिलता है वो प्योर नहीं है, तो मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, पर आप अपना गाय का प्योर दूध लो, घी निकालो, उसको एक चम्मच सुबह शाम ले लो आप, तो गर्मी कम कर देगा गाय का घी, वो सबसे अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं।
1: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, नमस्कार सर, नमस्कार मैम, मेरा नाम योगेश है और मैं देहरादून से हूँ। गर्मियों में भूख को लेकर काफ़ी समस्या हो जाती है कि भूख कम लगती है, क्या करें?
0: देखिए वही है, क्योंकि गर्मी में लीवर के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लीवर गर्मी के अंदर, और लीवर का काम है सारा डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, तो वहाँ जो है आपका अपने एक बार तो टेस्ट वेस्ट कराओ भाई, आपका लीवर फैटी तो नहीं है, और खाना क्या खाते हैं आप इसके भी डिपेंड करता है, वेजिटेरियन है या नॉन वेज हैं, और क्या काम करते हैं आपका काम का टाइमिंग क्या है, जो वर्क कैसा है आपका, तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, फिर आपकी सोच कैसी है, तो एक तो अपनी सोच को अच्छा रखो, पॉजिटिव सोच रखो अपनी, दूसरा आपका पेट प्रॉपर साफ होना चाहिए, पेट साफ होगा तो आपको भूख भी लगेगी, और उसके लिए आपको सुबह उठकर कम से कम 1.5 लीटर पानी पीना चाहिए खाली पेट, ठीक है, जब पानी पियेंगे तो आपका दीर्घ शंका होगी, पेट साफ हो जाएगा तो भूख भी लगेगी। आम मैं देखता हूँ कि आमतौर पर 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा, ज़्यादा होता है वो परेशान रहता है, कम वाले को पता नहीं चलता कॉन्स्टिपेशन है, पर जिसका भी पेट छाती से ऊपर जा रहा है, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडीज चाहे जेंट्स, समझो उसको कॉन्स्टिपेशन है, केवल प्रेगनेंसी में पेट ऊपर जाना चाहिए लेडीज़ का, उसके बाद तो जाना नहीं चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी भी आयुर्वेदिक के डॉक्टर से वहाँ संपर्क कर सकते हो, और उसे आप एडवाइस लो और उस तरीके से अपना खाना पीना ठीक करो, ये सबसे बेस्ट है। तो अपने आप को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, फूड हैबिट्स चेंज करो अपनी, और पथ्य का आहार करो गर्मियों में विशेष तौर से, आप पथ्य को छोड़ दो।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी कहा कि गर्मी में पाचन खराब हो जाता है, तो इसके लिए क्या आयुर्वेदिक में भी कुछ उपाय है?
0: हाँ है, क्यों नहीं, आप जैसे आयुर्वेदिक में आप चिरायते का सेवन कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लीवर के लिए काम करता है, बाकी दवाइयाँ तो बहुत कंपनियाँ दवाइयाँ बना रही हैं लीवर के लिए, बहुत दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं वो ले सकते हैं, बाकी भूख कम लग रही है तो सिंपल सा लौंड भास्कर चूर्ण है आपके हजमा का भूख को लगाएगा, ठीक है, बाकी ये आपका अदरक है घर में आपके नींबू है और उसमें अजवाइन डालो और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दो अदरक के और डिबो दो उसको, उसको सेवन करो, एक दिन डुबा रहने दो, उसको सेवन करोगे तो आपकी भूख खुल जाएगी उससे।
1: एक और मैसेज हमारे पास यह है, लिखते हैं, डॉक्टर बलजीत दबास और शिल्पा मैम को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गर्मियों में आयुर्वेद में बच्चे जवान और बुज़ुर्गों की डाइट कैसे अलग होगी, और ये फास्ट फूड का चलन हो गया है वो कितना हानिकारक है, और सुबह और शाम क्या करना चाहिए? थैंक्स नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार उत्तराखंड से लिखते हैं।
0: चौहान जी, बात यह है कि जो फास्ट फूड है ना, ये तो समझ लीजिए बीमार करने का एक मीडिया आ गया है हमारे बीच में, कि लोगों को बीमार करेगा और पैसा कमाएगा। अब इसमें एक भी चीज़ अच्छी नहीं है फास्ट फूड में, क्योंकि लोग आलसी हो गए हैं, सबको बना बना खाना चाहिए, ना आदमी काम करना चाहता है ना महिलाएं काम करना चाहती, खाना कौन बनाए? तो सबसे आसान है कि फ़ोन करो, किसी टाइम भी खाना मंगा लो, रात के 12 बजे मंगाओ, 2 बजे मंगाओ, तो ये तो भाई हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल है, आयुर्वेद के हिसाब से तो 7 बजे के बाद खाना खाना नहीं चाहिए, और यहाँ खाने का टाइम ही उल्टा है, सोने का टाइम भी उल्टा है, सो रहे हैं लोग 2-2 बजे, उठ रहे हैं सुबह 10 बजे तक, तो कहाँ से ठीक रहेंगे लोग? तो ये तो एक सिस्टम है, तो भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि फूड हैबिट जो है रात में भोजन मिल रहा है बंद कर देना चाहिए, रात को 10 बजे के 11 बजे के बाद तक तो कोई होटल कुछ खुला नहीं रहना चाहिए, अभी रात पूरी रात खुले रहते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी पहुँच से बाहर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, पर ये आप अपने आप में कर सकते हैं, अपना खुद खाना बनाओ और खाओ भाई, बाज़ार से क्यों मंगाते हो? आपको कोई फास्ट फूड वाले आपके घर थोड़ी आते हैं देने के लिए, आप ऑर्डर करते हो तभी तो आता है ना खाना, तो अब मत करिए ना ऑर्डर, आप घर में बना बना खाना खाइए, आपकी वाइफ होगी या बेटी बेटा जो भी है आप खुद बनाओ, कुछ भी करो, मतलब तो मत खाइए बाहर का, ये ज़रूरी थोड़ी बाहर का खाना खाना, ये तो अपने ऊपर बात है ना,
1: मतलब ये खुद ही अपनी डाइट का ध्यान रखें कि

0: में क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या पौष्टिक है क्या नहीं है। एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, हाय गुड हॉट नून, रिया फ्रॉम उत्तराखंड। ये लिखती है, माय फेवरेट ड्रिंक इन दिस बर्निंग समर इज चन्ना सत्तू एंड शुगर केन जूस एंड वुड एप्पल। वॉक करके आती हूँ इवनिंग में, तो बहुत हीट हो जाती है, तो कैसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे बॉडी कूल डाउन हो जाए।
1: देखिए, वॉक कितनी फास्ट करते हैं आप, भी डिपेंड करता है, स्लो करते हैं, मीडियम साइज मीडियम करते हैं या तेज़ करते हैं, और आपकी एज क्या है, ठीक है, आपकी हेल्थ कैसी है ओवरऑल, तो बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। अब आपकी आप ये तो आप हमें एज बताए, इतनी एज है, आप इतना वेट है, तो बताएंगे किस तरीके से करिए आप। तो आप मीडियम रास्ता अपनाइए, ना बहुत तेज़ चलिए ना बहुत स्लो चलिए, मीडियम चलिए। खाने पीने में गर्मी के मौसम में तो आजकल नींबू बड़ा सूटेबल है, आप नींबू की स्कंजी पी सकते हैं, आप दही की लस्सी बना सकते हैं, वो पी सकते हैं, सत्तू ले जो बता रहे हो आप, सत्तू लीजिए, बहुत अच्छा है, ठंडा है वो भी है ज़्यादा, तो ये मतलब जो भी ठंडी चीज़ें लीजिए, ठंडी जगह पर रहिए आप, ठीक है, तेज़ धूप में बाहर मत जाइए, तो सुबह शाम अपना बाहर का काम करिए, उस टाइम मत जाइए, अवॉइड करिए अपना, ये तो आपको देखना ना, ये हर आदमी की अपना इंडिविजुअल लाइफ। आयुर्वेद ये नहीं कहता कि भाई ये पैरासीटामोल सबका बुखार उतर जाएगा, नहीं, वो कहता हर आदमी की अलग अलग नेचर है, तो उसके हिसाब से अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, अलग अलग सिस्टम होता है कि इसको फॉलो करना पड़ता है। हर जो रूल्स है वो है ये कि भाई सुबह उठ के आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठिए आप। अब कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं बताइए मेरे को, लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का ही पता नहीं किस टाइम होता है। फिर उठ के पानी नहीं पीते लोग, एक कप चाय पीते हैं तो यहीं से बीमारी शुरू हो जाती है, जबकि चाय तो पीनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो आप सुबह सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीना चाहिए, उसके बाद आपको दीर्घ शंका होगी, दीर्घ शंका होने के बाद फिर वापस बैठिए और फिर 1 गिलास पानी कम से कम पीजिए, फिर आपको लघु शंका होगी। अब लोगों को दीर्घ शंका क्या होती है, लघु शंका ये भी नहीं मालूम होगा, और जब ये समझिए अगर आपको दीर्घ शंका होगी तो आपका पेट साफ हो गया, लघु शंका होगी तो आपका समझो खून साफ हो गया, किडनी काम कर रही सही। तो जब सारे सिस्टम काम करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए आप पहले, और आपके जो दांत हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, दांत से ही आपका सकारात्मक सोच, दांत से ही पेट साफ खून साफ स्वस्थ रहेंगे आप, सीधा फार्मूला है, इसको फॉलो करिए, आपकी बीमारी आपके पास आएगी नहीं भाई। तो खाने पीने का तो कंट्रोल करना पड़ा, जीभ पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा आदमी ठीक रह नहीं सकता।
0: डॉक्टर साहब, जैसे सर्दियों में होता है, हमें ठंड लग गई तो नज़ला जुखाम खांसी ये सब हो जाता है, तो क्या लू लगने के भी कुछ लक्षण होते हैं कि हाँ लू लग गई या कुछ गर्मी?
1: हीट स्ट्रोक होता है मैडम, शरीर में से आग सी निकलती है, जैसे आप जैसे ही भट्टी के पास बैठे पहला यही तो है कि गर्मी निकलेगी शरीर में से आग सी निकलेगी, तो उसके लिए एकदम ठंड में जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो तो हम कपड़ा गीला करके बॉडी पर लगा सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, या आजकल एसी आ गए तो एसी में रखो उनको, तो इस तरीके का कर सकते हैं। तो
0: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब, मैं नीता अमरावती से। सर, मेरे पति को लू बहुत लगती है, ऑफिस जाते टाइम एसी कार में जाते हैं, उनकी उम्र 55 है, आम का पन्ना और छाछ भी देती हूँ, ये सब करके भी लू क्यों लग जाती है? सिविल इंजीनियर हैं तो साइट पे जाना ही पड़ता है।
1: देखिए ऐसा है कि सिविल इंजीनियर साइट पे जाते हैं वो तो वहाँ धूप में खड़े होते हैं ना, ठीक है, वो तो क्योंकि काम है उनका, प्रोफेशन ऐसा, तो उनको बोलो भाई वाइट उनको दे ना एक छतरी खरीद के लाओ, सफ़ेद कपड़े वाली ऊपर वाली, ठीक है, और उनको बोलो एक सफ़ेद कोई कपड़ा रखें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, ठीक ठीक हालत में उसको गीला करें बार बार और सिर पर रख लें, तो सिर को कवर रखें ऊपर छाता रखें तो हीट नहीं लगेगी। दूसरा, कपड़े जो पहन रहे हैं वाइट कलर के कपड़े पहने, पूरी बाजू का कपड़ा पहने यानी हाफ बाजू का पहन रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब बॉडी को कवर रखें, ठीक है, और खाने पीने का तो आप अच्छा खिला रही हैं उनको, अच्छी बात है, ये तो आप दे रहे हो, पर उनको बोलो ये सत्तू वगैरह बना के उनको वहाँ भी दे दें ताकि वहाँ भी बीच में पिए वो, ठीक है ना, ये और ध्यान में रखें, और उनको बोलो पानी जब बार बार पानी पीना है आपको, ये प्रिकॉशन रखते उसको दिक्कत नहीं आएगी फिर।
0: तो डॉक्टर साहब, कितना पानी पीना चाहिए और कितनी कितनी देर में लेना चाहिए?
1: देखिए पानी का तो ये है कि कितनी उसकी हाइट है, कितना वेट है, आमतौर पर 3 लीटर पानी तो हमेशा पीना चाहिए
0: जनरल में, अगर सबके लिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके लिए।
1: हाँ, और ये अगर उम्र कम है बच्चे को थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा मोटा आदमी है या ज़्यादा मेहनत करने वाला है जिसको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो 3 लीटर तो है ही बच्चे, गर्मियों में 4 लीटर पानी भी आप इजीली पी सकते हैं। और आज के जैसे आपका जैसे लोग शराब वराब पीते हैं, मान लो कोई शराब पिएगा तो भाई गर्मी बढ़ेगी शरीर की, जब गर्मी बढ़ेगी तो आपका लीवर भी ख़राब होगा, आपका ब्रेन हेमरेज तक हो सकता है शराब ज़्यादा पीने से, आपका किडनी ख़राब हो जाएगी। तो एक ये है ना, खाना पीना क्या है, अब आपका जौ का सत्तू बनाइए, आजकल लोग बियर पीते हैं पर बियर में भी नशा डाल दिया इन्होंने, क्या कर दिया पता नहीं, तो बियर ठंडी रहती है वो आप दे सकते हैं, वो पी सकते हैं।
0: जिसके बारे में हम और भी बात करेंगे कि समर प्रॉब्लम्स आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। श्रोताओं, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य कार्यक्रमों

और आकाशवाणी के बारे में अपने विचार आप हमसे साझा कर सकते हैं। लगभग 2 मिनट के ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में अपने विचार भेजिए हमारे मेल आईडी healthairdelhi@gmail.com पर। बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं गर्मी की समस्याएं और आयुर्वेदिक समाधान पर। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, लेकिन त्वचा की हम देखभाल कैसे करें इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो हेलो, शायद लाइन कनेक्ट नहीं हो रही। तो आप हमें बताइए कि गर्मियों में हम बाहर जाएं तो स्किन पर क्या लगा कर जाएं, क्या नहीं लगा कर जाएं त्वचा पे, जिससे कि हमारी कई बार स्किन बर्न हो जाती है या रेडिशनेस आ जाती है।
2: देखिए मैं

0: तो एक भी कोई भी क्रीम जो बाज़ार में अवेलेबल है वो स्किन पर लगानी नहीं चाहिए कोई भी। सबसे बेस्ट है आप कोकोनट का कोकोनट खरीदो, अपने सामने तेल निकलवाओ, उसका इस्तेमाल करो आप, ठीक है, और उसको उसको तेल की उसकी मालिश करो, मालिश करने के आधा घंटे बाद स्नान करो, उसके बाद में ये साबुन वगैरह जो यूज़ करते हैं इसको थोड़ा कम साबुन करो या अच्छी क्वालिटी का साबुन इस्तेमाल करो। आम जो साबुन बाज़ार में मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, वो स्किन को और ख़राब करते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पूरे बाजू के कपड़े पहनो, आपको बॉडी कवर होनी चाहिए ताकि सन जो रेज हैं वो सीधे आपकी बॉडी पर ना पड़े। सबसे ज़रूरी है, अगर आपकी रेज सीधी नहीं पड़ेंगी तो बर्न आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। जितनी भी क्रीमें बना रखी हैं वो तो बिजनेस का आइडिया है लोगों का, लोग जाते हैं कोई कुछ इससे मिले करने के लिए, पर बाकी हमारे विचार से तो सब बेकार है। बाकी आप जैसे आपका आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप ले सकते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे
0: एलोवेरा, एलोवेरा जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग शेविंग करने के लिए बाज़ार से क्रीम खरीदते हैं, एलोवेरा का जेल निकालो।

0: करो। आम जो साबुन बाज़ार में मिलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालते हैं, वो स्किन को और ख़राब करते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात है, आप बाहर जा रहे हैं तो आपको पूरे बाजू के कपड़े पहनो, आपको बॉडी कवर होनी चाहिए ताकि सन जो रेज हैं वो सीधे आपकी बॉडी पे ना पड़े। सबसे ज़रूरी है, अगर आपकी रेज सीधी नहीं पड़ेंगी तो बर्न, आपकी स्किन बर्न नहीं होगी। जितने भी क्रीम में बना रखी हैं, वो तो बिजनेस का आइडिया है लोगों का, लोग जाते हैं को कुछ इससे मिले करने के लिए, पर बाकी हमारे विचार से तो सब बेकार है। बाकी आप जैसे आपका आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप ले सकते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन
0: एलोवेरा,
1: पे।
0: एलोवेरा जो है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप लोग शेविंग करने के लिए बाजार से क्रीम खरीदते हैं, एलोवेरा का जेल निकालो उससे शेविंग करो, बढ़िया काम करेगा, फर्स्ट क्लास एकदम, पैसा ही भी नहीं लगेगा, घर के घर काम हो जाएगा।
1: जी, एलोवेरा का सेवन करेंगे और
0: उसी करें,
1: पूरे,
0: उसी
1: हाँ
0: लगाएंगे बॉडी पे,
1: उसे बॉडी पे
0: पूरी बॉडी पे
1: लगाएंगे,
0: लगा सकते
1: पूरी
0: हैं।
1: बॉडी पे लगाएंगे
0: हाँ
1: और
0: जी,
1: पूरे कपड़े पहनने की कोशिश करेंगे जिसे
0: और लाइट कलर के कपड़े,
1: लाइट कलर के। जी
0: वाइट
1: हाँ,
0: बेस्ट है।
1: ओके। और एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं सोराज बोल रहा हूँ जी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ा से, हरियाणा से जी। डॉक्टर साहब को नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: जी बताइए,
2: डॉक्टर
1: क्या
2: साहब, मेरे
1: प्रश्न
2: जो
1: है?
2: ना, हाँ मेरा प्रश्न ये है जी कि मैं जो है जब सोच जाता हूँ ना, लेटरिन काली आती है जी, उसका कभी कभी उसमें मवाद आता है जी, और भूख कम लगती है जी। खाना
0: भाई खाना क्या खाते हो आप? अगर आप
2: तो मैं घर का ही
0: नहीं,
2: खाता हूँ जी,
0: घर
2: बाहर
0: का तो
2: का तो नहीं
0: खाते, अगर
2: खाता।
0: पालक खाओगे तो लेटिन काली हो सकती है, ठीक है ना? तो लेटिन काली के बहुत सारे कारण, अगर आयरन की कोई चीज़ें खाओगे तो, या कोई गोली खा रहे हो तो भी लेटिन काली हो सकती है, ठीक है? और पेट प्रॉपर साफ होता नहीं होता, ये अलग बात है। भूख का आपको भूख अच्छी लग रही है, पेट साफ हो रहा है, सुबह कितना पानी पीते हो उठ के?
2: 2-3 गिलास पानी पीता हूँ डेली।
0: देखो कम डेली 2-3 गिलास तो बहुत ही कम पानी है महाराज। सुबह उठकर कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीजिए बैठकर, पानी भी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, घुटने खराब हो जाएंगे।
2: अच्छा जी,
0: अब पानी में आप अब गर्मी का मौसम है नींबू डालकर पियो, अगर नींबू शूट करता है, ठीक है ना? आधा आधा लीटर करके दिन में 2-3 बार पहले सुबह सुबह खाली पेट, पेट साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर पानी पियो, फिर बार बार बाथरूम जाएगा, खून भी साफ हो जाएगा, बीमारी आएगी नहीं ना कहीं भी। और बाजार का अगर कुछ खा रहे हो अड़ंग दड़ंग तो मत खाइए, फास्ट फूड का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। और बोलिए।
1: डॉक्टर साहब एक मैसेज भी हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम है डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं सत्तू चने का जो का बेस्ट होता है, तो प्लीज़ गाइड करिए कि और क्या क्या हम ले सकते हैं। ये है सतीश कुमार, एज है 66 साल, रोहिणी सेक्टर 17, दिल्ली से।
0: देखिए, जो सत्तू आप ले रहे हो जौ का चने का, वो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? सभी को लेना चाहिए। बाकी तो आप गर्मी के मौसम में जो गर्मी में फल पैदा होते हैं, जो सब्जियां गर्मी में पैदा होती हैं, जैसे आप पर खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, ये आप खाइए। जूस पीना तो आपका संतरे का जूस पीजिए आप, अनार का जूस पीजिए आप, ठीक है ना? तो ये चीज़ें, नींबू आपका बहुत बेस्ट है, नींबू का पानी पीजिए, दही की शिकंजी बना के पीजिए आप, छाछ पीजिए, ये चीज़ें लीजिए आप, सबसे बढ़िया रहेगा। और गर्म चीज़ें तली और चीज़ें अवॉइड करिए आप, और बाज़ार का खाना छोड़ दीजिए, बाज़ार में धूप में बाहर घूमना बंद कर दीजिए, ये रखिए।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
3: हाँ जी नमस्ते मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते।
1: नमस्ते, आपका
0: नमस्कार,
1: नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मैं योगराज बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: प्रश्न ये है जी, जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले बताया था, मैं प्रोग्राम शुरू से सुन रहा हूँ, जैसे कि तरबूज भी खाओ इस मौसम में, लेकिन हमने जो न्यूज में देखा, तरबूज खाने से जैसे 2 जगह मौत हुई है,
0: ओह ये देखिए, ऐसा
3: तो
0: है, सुनिए मेरी बात। आप अगर किसान हैं और खेती करते, तरबूज अपना खुद उगाइए आप और उसको खाइए, तो कहीं कोई इंजेक्शन का चक्कर नहीं। कोई आजकल तो बड़ी हेरा फेरी हो रही है, क्या कहें, कौन इंजेक्शन लगा रहा है, वो आजकल बेल में इंजेक्शन लगा देते हैं
3: हाँ
0: अगर
3: जी, हाँ जी, नहीं
0: तो।
3: ये भी दिखाया जी, बेल में जो
0: हाँ
3: इंजेक्शन लगाते हुए को भी पकड़ा मैंने, नूज भी देखता हूँ मैं साथ
0: हाँ
3: में।
0: पकड़ा ना आपने, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसी चीज़ें मत खाइए आप। अगर ऐसे खाओगे तो भाई कुछ ये तो यहाँ पे क्या एक्चुअल में क्या है
3: तो हमें ये कैसे पता चले ये इंजेक्शन का, ये बिगर
0: भैया,
3: इंजेक्शन का?
0: ये बात, सवाल आपका बड़ा अच्छा है। ये देखिए, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई, जैसे रिलायंस कंपनी है सपोज, 1 मिनट, वो खुद अपनी चीज़ें उगा रही है, ठीक है? खुद उगाते से मान लो फसलें उगा रही है, वो तरबूज उगा रही है, तो मैं समझता हूँ वहाँ हेरा फेरी नहीं होगी। जो जो रेहड़ियों पर जो बिकता है, यहाँ बदमाशी होती है, ये लोग बदमाशी करते हैं। और ये अब क्यों करते हैं ये तो आप समझ सकते हो, जो भी जैसे चल रहा है मामला। तो ऐसा मत खाइए, उनकी मत छोटी दुकान से, इन रेडियो से मत लीजिए कोई।

0: जो एक अच्छा जो ठैया है ना, जहाँ पे लोग पता है कि रिलायंस वाला है मान लो, या कोई और अच्छी कंपनी का आपके एरिया में कोई होगा मुझे नहीं मालूम, तो जो खुद उगाता है उससे आप लोगे तो मैं समझता हूँ ऐसी नौबत नहीं आएगी।
1: मतलब
0: बाकी तो ये होता है अगर मान ली कोई पौधा मेडिसिन अगर सांप के बिल के पास बनती पैदा होती है, सांप के बिल के पास पैदा होती है, तो उसमें भी कई बार सांप जैसे जहर उगलता है या पड़ता है तो उसमें भी उसका असर आ जाता है उसके। ये तो बड़ा नाजुक मामला है इस चीज़ का, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप खुद ध्यान रखिए और कहाँ से ले रहे हो ये देखिए, आपको देखने का विषय है।
1: वही जागरूक होना भी बेहद ज़रूरी है कि आप खुद ही देख रेख के अपना सामान लें कि हम क्या खा रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हमें देख रेख करनी चाहिए, तो लेकिन ऐसे मौसम में, गर्मी के मौसम में, बच्चों और बुज़ुर्गों को गर्मियों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए ये बात सही है कि बुज़ुर्ग और बच्चे, ये शरीर इनका ज़रा नाजुक होता है
1: जी,
0: और इम्यूनिटी पावर भी थोड़ा कमी होती है इनमें, और ये गर्मी को ज़्यादा ना गर्मी को ज़्यादा सहन सकते हैं और ना सर्दी को ज़्यादा सहन सकते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे बेस्ट है कि चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो बुज़ुर्ग हो, वो धूप में ना जाएं बाहर, जाना पड़े तो सुबह शाम अपना काम करें, खेलना बच्चों को खेलना तो सुबह शाम खेलें, बुज़ुर्ग पार्क में जाते हैं तो सुबह जल्दी जाएं उठ के, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उसके बाद में अपना उषा पान करने के बाद में फ्रेश होकर आप पार्क में जाओ, आप 3 बजे 3:30 बजे उठो, उसके बाद में 7-8 बजे तक घर में आ जाओ। ऐसे बच्चों को थोड़ा, बच्चे तो नहीं उठा सकते 3 बजे, पर कम से कम उनको 5 बजे 6 बजे उठा लो, 6 बजे उठा कर आधा 1 घंटा घुमा के बना ले आओ भाई। आज जैसे आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, अगर आप धूप में बच्चों को भेजोगे या बुज़ुर्ग किसी सामान के लिए भेजेगा जाएगा बाज़ार में धूप में, तो फिर तो नेचुरल बड़ा मुश्किल है उनका बचना धूप से, तो इसलिए बहुत मजबूरी है जाने की, तो फिर अपने छाते का इस्तेमाल करो, फुल बाजू के कपड़े पहनो और कपड़े वाइट पहनो या बिल्कुल लाइट कलर के पहनो, ये सब प्रिकॉशन रखो तो बचाव रहेगा।
1: तो ऐसे मौसम में बच्चों को जैसे स्कूल भी जाना होता है, खेलने भी जाना होता है, उनको गर्मी ना लगे तो उनको क्या दें?
0: देखिए सरकार ने इन मौसम में 2 महीने छुट्टियाँ कर दी गवर्नमेंट, इसलिए स्कूल बच्चों के बंद हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस बात में बड़ी जागरूक है जो छुट्टियां दे रही है बच्चों को, पता है कि बच्चों को हीट गर्मी नुकसान कर सकती है। बाकी बच्चे जो खेलते हैं वो ये तो सुबह सुबह के टाइम खेलें जल्दी, या फिर शाम को 6 बजे के बाद खेलें तो हम बचाव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करना चाहिए, बच्चे तो क्या मेहनत का करेंगे, जैसे बुज़ुर्ग आदमी कई क्या होता है वो काम करने की हैबिट होती है उनकी, वो ताकत से भी ज़्यादा काम करते हैं, तो वो दिक्कत नुकसान कर जाता है उनको, क्योंकि ज़िंदगी में उन्होंने मेहनत की होती है ना, तो उनके लिए लगता है हल्का है, पर होता है भारी, उनका शरीर इतना लाउड नहीं करता।
1: तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो उनको फॉलो करनी चाहिए?
0: देखिए पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए, सबसे बढ़िया है कि पूरी अच्छी डाइट लेनी चाहिए उनको, तो डाइट अच्छी लेंगे, डाइजेशन उनका ठीक होगा, उनका सोच अच्छी पॉजिटिव सोच रखें, टाइम से खाना खाएँ, टाइम से सोएँ, तो अच्छा है। देखिए सबसे ज़रूरी है आपका सोच पॉजिटिव रखना, फिर आपका आहार, पहले आहार आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर आहार खाना चाहिए, उसके बाद निंद्रा, आपको पूरी निंद्रा लेनी चाहिए, 6 से 8 घंटे की जो नींद का है सिस्टम, तो उसको पूरा लेना चाहिए, ज़्यादा सोना भी नुकसानदायक है और कम सोना भी नुकसानदायक है, तो ये चीज़ें लेंगे। तीसरा है फिर आहार, निंद्रा और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का कि मतलब कोई सेक्स ही नहीं है खाली, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आपकी जो भाषा है, जो आप वर्ड बोल रहे हो वो ऐसे ना हो जो दूसरे को चुभते हों, मतलब कंट्रोल के वर्ड होने चाहिए, ऐसी बात ना बोलो जो दूसरे को बुरी लगे, तो उसमें भी कंट्रोल रखो, हर चीज़ पे कंट्रोल होना चाहिए, वो ब्रह्मचर्य है। तो लोग एक्चुअल में ब्रह्मचर्य को सिर्फ सेक्स से जोड़ लेते हैं, ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये कंट्रोल आपके हर चीज़ पे कंट्रोल है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कंट्रोल कर रखी बहुत चीज़ों पर कंट्रोल आपका, तो ये कंट्रोल ही रखना ही ब्रह्मचर्य है। तो ये तीनों चीज़ें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, इसका पालन करोगे तो मैं समझता हूँ बीमारी आएगी नहीं। ये आयुर्वेद में इनको उपस्तंभ बोला है, जैसे स्तंभ होता है उसके जो नीचे लगाते हैं वो उपस्तंभ कहलाता है, यानी पूरा जो छत का वजन जो है उठ लेता है वो।
1: और सर अगर हम बात करें गर्भवती महिलाओं की, तो उनको कैसे उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उनका कैसी देखरेख करनी चाहिए?
0: देखिए गर्भवती महिलाओं को भी विशेष ध्यान रखने की बात जरूरत होती है, एक तो उनको डाइट, ज़्यादा डाइट की जरूरत होती है बच्चे के लिए भी और अपने लिए भी, दूसरा वो महिलाएं काम भी ज़्यादा करती हैं तो उनको भी चाहिए को सुबह सुबह जल्दी वक्त से काम कर लें, गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें, बाहर ना जाएं, और खाना पीना तला भुना ये गर्म चीज़ें, गर्म मसाले वगैरह ना खाएं, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें, मौसम के हिसाब से जैसे आपका दही की छाछ है या सत्तू, जैसे आपने बताया था सत्तू है, और आपका नींबू का पानी है, चावल है और जौ है।

0: इनका सेवन करें, ये ठंडी चीज़ें सारी ये खानी चाहिए सभी को। गर्मी में तो जौ का सेवन बेस्ट है, चावल भी बेस्ट है।
1: जी हाँ, इस पर हम बातें अभी और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: जी जी डॉक्टर, में आज हम बात कर रहे हैं समर प्रॉब्लम्स एंड आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस पर। एक मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम एंड डॉक्टर जी, मोहम्मद इम्तियाज़ जवाहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, आज की बात पे पहुंचना चाहता हूँ कि मेरी एज 40 साल है, हेल्थ हाइट 5.7 है और वेट 80 प्लस है। जैसे ही सुबह हल्का गुनगुना पानी में अजवाइन और गुड़ डाल के पीता हूँ। शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वज़न कम करना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करूँ?
1: देखिए, वज़न कम करना चाहते हैं तो घिया और तोरी का सेवन करो, बाकी छोड़ दो, और खाना पीना कम करो और गर्म पानी में नींबू डाल के पियो, ठीक है? मीठा बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाय पीते हो फीकी पियो या ग्रीन टी पियो, वज़न घटेगा, ठीक है?
0: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, माय नेम इज़ मुकेश, एज इज 79 ईयर्स, आई एम टेकिंग झंडू पंचारिष्ट, कैन आई यूज़ दिस इन दिस हॉट समर डेज?
1: देखिए, अगर आप झंटू पंचारिष्ट पी रहे हैं गर्मियों सर्दियों में भी, और अभी आपको शूट कर रहा है, तो आप पी सकते हो। अगर पीने से कोई दिक्कत ज़्यादा होती, मात्रा घटा सकते हो, 4 चम्मच पी रहे हो 3 चम्मच कर दो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बंद कर दो, क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है, हर एक का। आयुर्वेद में ये सिस्टम नहीं है कि भैया

0: पे सब के लिए एक ही फार्मूला लागू होता है, या मौसम के हिसाब से सब ऐसे कर सकते नहीं है, तो मौसम के हिसाब से भी चेंज होता है, खान पीने में भी चेंज होता है, और इंडिविजुअल के ऊपर, जैसे मान लीजिए किसी को, बहुत से ऐसे लोग हैं दूध पसंद करते हैं, पर ऐसे भी लोग हैं जिनको दूध से एलर्जी होती है, वैसे आमतौर पर दूध सब पसंद करते हैं ना, पर दूध से एलर्जी होती है, किसी को चावल से एलर्जी हो रही है किसी को, तो अगर किसी को कोई चीज़ शूट नहीं करती तो सीधा फार्मूला उसको मत लीजिए आप, जो शूट करते हैं इससे लाभ होता है लीजिए, और ये इस बारे में जो पेशेंट है वो ज़्यादा जान सकता है कि मुझे क्या शूट कर रहा है और क्या नहीं कर रहा।
1: डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि मौसम का असर हमारे स्वभाव पे भी पड़ता है, अच्छा मौसम होता है हम खुश होते हैं, अब जैसे गर्मी का मौसम होता है तो कई बार हम भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में इसके लिए भी आयुर्वेद में कुछ है?
0: हाँ देखिए, नेचुरल क्या है, जब हमारा शरीर खुश होता है, जैसे मन खुश होता है, तो तभी मन खुश होगा जब हम अच्छा फील कर रहे होंगे, गुड फीलिंग होगी, और जब हम गर्मी में परेशान होंगे या किसी भी वजह से परेशान होंगे तो फीलिंग कहाँ गुड रहती है, फिर तो फीलिंग गड़बड़ आ जाती है, तो इसलिए ना स्वस्थ रहना सबसे ज़रूरी है, अगर हम हेल्दी हैं स्वस्थ हैं तो नेचुरल गुड फीलिंग होगी, और फिर हम किन लोगों के साथ बैठे हैं, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं चीज़ों में गुड फीलिंग के लिए, ये नहीं खाली हम काम उधर तो कुछ गलत काम कर रहे हैं, उधर गुड फीलिंग कहाँ से आएगी भाई, गुड फीलिंग तब आएगी जब अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे जो सब उसको सराहें भी अच्छा काम कर रहा है, अगर कोई उसको कहेगा ये बेकार काम है तो कहाँ गुड फीलिंग आएगी, तो ये है कि सोच के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है, और हमारा हेल्थ ठीक है तो हम अच्छी गुड फीलिंग कर सकते हैं, अच्छा सोचेंगे तो गुड फीलिंग रहेगी।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि जो लोग कामकाजी हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कई बार होता है कि कईयों को ऑफिस में काम होता है, वो पूरा पूरा दिन एसी में रहते हैं, जब ऑफिस वर्क ओवर हुआ या लंच टाइम हुआ वो एकदम सडनली एसी से बाहर निकलते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रॉपर फील्ड वर्क होता है तो वो एकदम से गाड़ी में बैठे या ऑफिस में गए तो एकदम सडनली एसी में गए, तो ये जो सडन मौसम का चेंज होता है या एनवायरनमेंट चेंज होता है तो जिसकी वजह से कई बार तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपचार है?
0: उसके लिए एक भी, जैसे आप मान लीजिए एसी में बैठे हैं, अपन को बाहर जाना है तो 10-15 मिनट पहले एसी को बंद कर दीजिए ताकि बॉडी आपका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए, ऐसे ही गाड़ी में से आप उतरना है आपको तो पहले गाड़ी का एसी बंद कर दीजिए ताकि बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए, ये तो है भी, ये तो नहीं कि बाहर तो एसी नहीं लग रहा है, आस जगह पे बाहर तो एसी है नहीं, हमारी पृथ्वी पर बेस हर जगह एसी चल रहा है, ये तो ठंडा मुल्क तो है नहीं है, तो ये है कि हमें ये अपने आप को सोचना है और अपने आप से करना है कि आप अगर जैसे गर्मी से आप एसी में जा रहे हो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बॉडी धीरे धीरे कूल करेगी, पर जब आप कूल हो और एकदम बाहर जाओगे तो वहाँ हीटअप होती है बॉडी, तो वहाँ पहले ही एसी बंद हो जाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर आपका नॉर्मल के करीब आ जाएगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
1: और साथ में अगर हम देखें जैसे गर्मियों में वर्कआउट करने के लिए भी कई बार मन करता है कई बार नहीं करता क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ऐसे में योग और प्राणायाम गर्मियों में कितना लाभकारी है और कौन कौन से करने चाहिए जिससे हेल्दी भी रहें और फिट भी रहें?
0: देखिए, प्राणायाम तो मैं समझता हूँ कोई भी नुकसान करने वाला नहीं है, आप कम टाइम करिए उतना, जैसे आपको मान लीजिए आपकी प्राणायाम करने की ताकत आधा घंटे की है तो आप 15 मिनट कर लो बस, मतलब इतना ज़्यादा ना करो जिससे आपके बॉडी पर ओवरलोड पड़े, हल्का खाओगे तो एक्टिव रहोगे, भारी खाओगे तो सुस्त पड़ जाओगे, तो वाली बात है, प्राणायाम करना है, कोई एक्सरसाइज करना है, योग करना है, वो लिमिट में करो, ये नहीं कि भाई आप ठंडे के मौसम में 1 घंटा कर रहे हो, गर्मी में 1 घंटा करोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए टाइम रिड्यूस करो उसका, और इस तरीके से करोगे तो एडजस्ट हो जाएगा बॉडी, अपनी इंडिविजुअल बॉडी एडजस्ट कर, टाइम क्या करने का ये भी डिपेंड करता है, अगर आप सुबह सुबह ठंडे मौसम में करेंगे तो ज़्यादा कर पाएंगे, गर्मी शाम को करेंगे तो शाम को टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो नेचुरल वहाँ आप कम कर पाएंगे, तो वहाँ अगर ज़्यादा करेंगे दिक्कत आ जाएगी आपको, तो इसलिए अपने आपको खुद एडजस्ट करना पड़ता है।
1: और अक्सर होता है कि हम एकदम ठंडा पानी भी पी लेते हैं, तो पानी किस टेम्परेचर का हमें पीना चाहिए क्योंकि गर्मी लगती है, प्यास लग रही होती है, लगता है कि हाँ नॉर्मल पानी पियेंगे भी प्यास नहीं बुझेगी।
0: देखिए ऐसा होता है, यही तो बात है कि भाई आप मटके का पानी पियो, मटके में पानी रखो उसको पियो, कुछ भी नहीं होगा आपको, ना गला खराब होगा, ना खांसी होगी, ना कुछ होगी। अब हम एसी का भागते हैं, अब बाहर गर्मी में से आए और एसी का ठंडा पानी पियेंगे तो गर्म सर्द हो जाएगी, तो फिर आपको गला भी खराब, गला पकड़ा जाएगा और खांसी जुकाम भी हो सकता है आपको, इसलिए बेहतर है अगर मान लें मटका नहीं है घर में, एसी है तो पानी ठंडा गर्म में मिक्स कर लो फिर पी लो उसको, पर एकदम ठंडा मत पियो आप, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी एकदम ठंडा है तो आपको दिक्कत पड़ेगी।
1: सर, और एक ये चीज़ और जानना चाहेंगे कि एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, और डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। वो लिखते हैं कि बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी उपयोगी जानकारी दे रहे हैं,

0: वो लिखते हैं, मेरा प्रश्न है कि गर्मियों के दिनों में मुंह पर घुमौरियां हो जाती हैं, इसका क्या कारण है? हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए कि हमें मुंह पर घुमौरियां ना हो? इसके बारे में बताने का कष्ट करें।
1: देखिए ऐसा होता है, एक आपकी एज कितनी है, हम ये जानना चाह रहे हैं।
0: उन्होंने लिखे, उनकी एज जो है 25 वर्ष।
1: बस यंग एज है आपकी।
0: जी,
1: तो
0: यह
1: ये
0: है
1: देखिए,
0: जोगाराम बलोतरा राजस्थान से।
1: योगाराम जी, गर्मियों में लोग आम खाते हैं और आम जो है वो कार्बाइड में पक रहा है, पता है आपको, कार्बाइड में पकता है और कार्बाइड से कैंसर होता है, ठीक है। और आम की तासीर वैसे गर्म है, तो ये जो गर्म आम है और गर्म कार्बाइड का तो छोड़ दीजिए आप, वो तो पूरे देश में ऐसे चल रहा है, इसलिए कैंसर भी फैल रहा है उससे। पर जो गर्मी है और आम खाने से ऐसी घुमरियाँ हो जाती हैं आमतौर पर यंग एज में, ये कॉमन है। इसका तरीका ये है कि आम को पहले आप पानी में भिगो, कम से कम 24 घंटे पानी में भिगा रहने दो, पानी चेंज करो उसका, और उसके बाद में उसको खा रहे हो तो दूध के साथ लो उसको, दूध आम और दूध मिक्स करके लो, या आम खाओ ऊपर से दूध पियो, तो फिर ये घुमरी आपको नहीं होगी। और बिल्कुल ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ फ्री में। अगर आप 10 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं 6 घंटे की नींद लेके, तो 4 बजे, 5 बजे और 6 बजे अपना स्पूटम अपने चेहरे पर लगाओ। ऐसा करोगे तो 15 दिन में घुमरियाँ आपकी सूखनी शुरू हो जाएंगी, तो ठीक हो जाएंगी बिना दवाई के।
0: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम?
2: सलाउद्दीन बोल रहे हैं जी, कस्बा कठौर, जिला मेरठ से। सर,
0: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लाए हैं डॉक्टर साहब, को भी हमारा सलाम।
1: सलाम जी।
2: हाँ जी, हमारे जो बच्चा है करीब 6 साल का है, वो गर्मियों के दिनों में और उसकी आंखों में बहुत खुजली हो जाती है, तो इसके लिए आपसे बस ये मालूम करना था।
1: देखिए ठंडे पानी के छींटे मारी आंखों पे उनको, आंखें
2: जी
1: बंद करा के ऊपर से मारी ठंडे पानी छींटे, दिन में 3-4 बार आंखें धोइए और उसको कम से कम 2 बार उसको नहलाइए, और धूप में उसको जाने से बचाइए आप, और धूप का चश्मा अगर आप बच्चा लगा सकता है तो उसका इस्तेमाल करें बस।
2: और जैसे आंखों में कोई आयुर्वेदिक की कोई ऐसी दवा है डालने की?
1: डालने के लिए आयुर्वेदिक दवाई आती है, एक आइसोटोन आती है, वो डाल सकते हैं।
2: अच्छा, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है जी, आप ये रेडियो पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी,
1: धन्यवाद।
2: जितने भी आप हमारे साथी सुन रहे हैं भाई, सभी को हम कहना चाहेंगे प्रोग्राम सुना करें और उस पर अमल करें। और हम भी
1: शुक्रिया।
2: सुबह उठ के पानी पीते हैं करीब 1-1.5 लीटर, और उसके बाद में सोच जाते हैं, साफ हो जाता है पेट, इसलिए बहुत अच्छा दिन भी
0: जी
2: अच्छा
0: जी
2: गुजरता है।
0: जी धन्यवाद।
2: अच्छा
0: डॉक्टर साहब, जैसे कि उन्होंने आंखों का पूछा, तो एक बार संक्षिप्त में, मैं चलने का समय हो गया है, लेकिन एक बार जानना चाहूंगी कि आयुर्वेद के अनुसार किस तरह की डाइट सभी को लेनी चाहिए?
1: देखिए आयुर्वेद में तो जैसे वेदों में अपना, जैसे अपना सनातन है, ये जिंदगी जीने का एक तरीका है, और आयुर्वेद में जो है वो स्वस्थ रहकर जीने का तरीका है। तो अगर आयुर्वेद को अपनाते हैं तो मैं समझता हूँ कोई आदमी बीमार हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें यहीं से शुरुआत होती है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर वृक्षपान करना, उसके बाद में फ्रेश होना, मंजन करना, ब्रश करना। अब ब्रश मंजन की बात है, मंजन की बजाय सबसे जो है बबूल और नीम की दातुन सबसे अच्छा है, पर लोग उनको भूल गए। आजकल पेस्ट लगा रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, तो उनसे कैंसर भी हो रहा है मुंह का, तो या फिर आयुर्वेदिक मंजन करिए। अब ये है, यहाँ पे जो मिलावट का चक्कर है सबसे बड़ा खतरनाक है। अब लोग मिलावट से बचते, कोई मिलावट के लिए तो कोई यहाँ पे सिस्टम ही नहीं है, कोई किसी चीज़ में कुछ भी मिला सकता है आपको, कोई भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही आपको, तो आप करेंगे क्या? तो ये कि आयुर्वेद में जो सिस्टम लिखा है उस तरीके से आप नहाना खाना पीना सब एक लिमिट में रखिए आप, तो उस चीज़ को अपनाएंगे आप तो मैं समझता हूँ बीमार होगी नहीं आप, ठीक है। उसमें वही है, हम पहले मानते हैं, हमने बताया पहले भी, सकारात्मक सोच रखो, उसके बाद में अपना दांत ठीक रखो, और जैसे दांत सही तो पेट सही, और पेट सही तो सेहत सही, सीधा फार्मूला है। फिर आपका पेट साफ़ होना चाहिए, फिर आपका खून भी साफ़ होना चाहिए, उसके लिए आपका दीर्घ संका पेट साफ से लघु संका खून साफ करते, बार बार पेशाब आता है आपको तो साफ़ रहेगा। अब लोगों को कब्ज है किसी को, अब खाना ऊटपटांग, कितने मसाले उल्टा सीधा खाना खाते हैं तो किडनी ख़राब कर रहे हैं, कहीं लीवर खराब कर रहे हैं, कहीं कितनी प्रॉब्लम, और गैस बनती है लोगों को, गैस बनकर गैस जहाँ भी जाती है वहीं अपनी बीमारी पैदा پیدا کرتی ہے, گال بلڈ سٹون بن رہا ہے, ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں, وہ سب گیس کی مہربانی سے ہو رہے ہیں. جہاں گیس جائے گی اپنا کام, گیس مطلب وایو, اور یہ گرمیوں میں وایو بڑھ

0: बचती है, वायु का वेग बढ़ता है, इसमें कफ का कम होता है, इन ताकत कम हो जाती है और शरीर इस तरीके से वायु का वेग बढ़ता है। तो खाने पीने का सिस्टम ज़्यादा जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं।
1: एक मैसेज हमारे पास ये लिखते हैं, हेलो डॉक्टर, डॉक्टर साहब जी एवं शिल्पा जी और शालिनी मित्तल जी को सादर प्रणाम। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और विषय भी बहुत अच्छा है। आज आयुर्वेद पर जानकारी प्राप्त हुई। ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जाते जाते संक्षिप्त में बस इतना श्रोताओं के लिए एक मैसेज बता दीजिए कि गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए रोज़ क्या करें।
0: देखिए, गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ठंडी चीज़ों का खाना, धूप से बचना, गर्म मसाले वगैरह नहीं खाना, वेजिटेरियन फूड खाएं आप, वो ठंडा हो सकता है, नॉन वेज हमेशा गर्म रहता है, ठीक है। तो जितने आपके ड्राई फ्रूट हैं उनको भिगो के खाएं आप, सूखे ना खाएं, और सूखे गर्म होते हैं, भीगने के बाद में गर्मी ख़त्म हो जाती है, तो आप खाएं उनको। पानी ज़्यादा पिएं, बार बार पानी पीते रहें, हर घंटे में 2 घंटे में 1 गिलास पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि जितना पानी पिएंगे, क्योंकि पानी हमारा बाथरूम से भी जा रहा है बाहर, खून साफ हो रहा है, पसीने से भी जा रहा है, और जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, स्वस्थ वही जो मौसम के साथ संतुलन बनाकर चले और प्रकृति के नियमों को अपनाए। आयुर्वेद सिर्फ उपचार नहीं, स्वस्थ जीवन जीने की कला है। स्वस्थ जीवन की शुरुआत सही आदतों से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर बलजीत सिंह दबास, आयुर्वेद स्पेशलिस्ट। आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैडम, आप मुझे बुला रहे हैं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपना ज्ञान लोगों को दूँ और लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कि हमारा उद्देश्य ये है कि आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो आप अपना काम भी सही करेंगे और अपना परिवार का काम भी, परिवार को भी सब संभालेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो देश की सेवा भी सही करेंगे।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthair@delhi.com। जाते जाते बस इतना कहूँगी, गर्मी की तपिश से बचाव का मंत्र है सही दिनचर्या और संतुलित आहार। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाज़त। फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, सजग रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: अल्लू ले लो, टिंडे ले लो।
1: जी दोस्तों, शाम के 4 बज चुके ने एंड एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका जिसका नाम है जी हेलो जलंधर।
0: अल्लू टिंडे,
1: तुसी कहोगे की भाई आ केड़ा भाई आ गया है, केड़ा ही आ गया रेडियो ते आंदी आलू टिंडे बेचन लग पया है।
2: जनाब इदा है कि एक ना आप 4-5 दिन पहला एक प्रोग्राम किया सारे कह सका कि तुसी

0: शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जागले।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो सीमा जी, फिर आज क्या बेचेंगे? मैं चाहता हूँ कि आप हमें जो बस में ना, जो हमें वो दाल चना या चाय या फिर कुछ ऐसी
0: हाँ,
1: चीज़ें,
0: चाय, चाय पकोड़े,
1: चाय पकोड़े। चलो फिर आ जाओ फिर चाय पकोड़े।
0: चाय, चाय बड़े पकोड़े, पकोड़े पकोड़े, चाय लो, चाय लो, चाय बड़े पकोड़े, पकोड़े चाय।
1: अभी अभी जो मैडम सीमा है, जो इंग्लिश सॉरी म्यूजिक के टीचर है, अभी आपके स्टूडेंट अगर आपको सुन ले तो क्या कहेंगे कि हमारी मैडम तो रेडियो पे चाय भेज रही थी कल। चलो बहुत ही शुक्रिया, बहुत
0: जैसे मोदी,
1: जी जी क्या कह रहे हैं
0: नहीं मैंने कहा जैसे कई बार लोग मोदी जी को बोल देते हैं ना चाय वाला।
1: आप? ठीक है, ठीक है, तो ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। सीमा जी,
0: ओके जी,
1: कौन सा
0: ओके
1: गाना
0: जी,
1: कौन सा सुनेंगे वैसे आप?
0: गाना यही सुना दो, लग जाए गले।
1: चलो ठीक है, ये वाला, या मैं किसी और दोस्त को भी कॉल उठाऊंगा तो वो जो वो बोल देगा
0: ठीक
1: वो
0: है,
1: उठा
0: ठीक
1: दूंगा। ठीक है,
0: है, ओके
1: थैंक यू सो
0: ओके
1: मच जी सीमा जी, बड़ा अच्छा लगा, पहली बार आप प्रोग्राम में जुड़े हो, पहली बार ही मोहित रूबल से बात कर लिया आपने, सो और क्या हो सकता है। ओके जी, सो एक और कॉल चुक लेने जी। हेलो,
2: कभी शिकवा करते हैं,
1: हाँ,
2: कभी शिकायत करते हैं,
1: वाह वाह वाह, हम्म,
2: जो आकाश पानी से सच्ची मोहब्बत करते हैं।
1: क्या बात है सर, की हाल चाल सर?
2: जी नमस्कार,
1: नमस्कार,
2: सतीश कुलियानी, दिलकुशा मार्केट जलंधर, रहते अपने दोस्तों के दिल के अंदर।

0: सब ठीक ठाक हो?
1: पहले तो तुम मुबारक ठीक ठाक है जी।
0: मुबारक सरकारियां, गर्मियां दियां।
1: मुबारक हैप्पी बर्थडे नहीं आ गया जी। तो मुबारक इस गल दी कि तुम दो कॉल ला रहे हो
0: हाँ, मैंनू सीगा
1: और
0: कि थोड़े सारे आपां जिहड़े गुस्से के लिए कर जांदे ने उह खतम करिए आपां।
1: हाँ बिल्कुल दो कॉलर ला रहे हो उहदी मुबारक, एक छोटा छोटा गीत सुना रहे हो उहदी मुबारक,
0: जी
1: एक
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: ज्यादा कॉलर लिया तुसी उहदी मुबारक।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: और सारे लोगों से उम्मीद ही चाहिए जी कि
0: चलो
1: दो कॉलर लैन फर्स्ट ताकि वारी सारे भी आ जाए।
0: जी जी जी जी ते फिर अज फिर तुसी की वेचोगे? तुहाडी मार्केट विच तां जिहड़े बंदे दो तीन चीजां वेचदे ने, गोल गप्पे या बाकी चीजां, उह तां खड़े रहिंदे ने।
1: नहीं गोल गप्पे नहीं औका दी मारदे कह रहे पापड़ो पापड़ी पापड़ी करारे, एक आंदा जी दूसरा अपने पुराने गीजर पुराने कूलर पुराने
0: अरे वाह
1: मशीन पुरानिया पखे वेच
0: वाह, लोहे रद्दी वेच वाले भी करके तुसी तां, है ना?
1: लोहा रद्दी वाला भी आता जी,
0: सही है सही है सही
1: लोहा
0: है।
1: लोहा लोहा वेच रद्दी वेच लोहा वेच। मैं हम कह जी एक खंबा लगे सी, मैं कहा दिवाली वाले दिन आई कहना की बेचना, मैं कहा खंबा खंबा बेचना
0: सही है सही है सही है। एक वो भी होंगे ना जिहड़े करारे लड्डू वाले, वो
1: हाँ वो भी आंदा जी।
0: भी बहुत वधिया कहते करारे
1: हाँ
0: लड्डू।
1: वो होता है करारे लड्डू करारे। गाना
0: ठीक है जी सर, केड़ा गाना सुनोगे अज?
1: ला दो जी, फिल्म है आंखें
0: फिल्म आंखें।
1: मिलती है आकाशवाणी में, शीश गुलियानी की कॉल कभी कभी
0: ओहो, आंखें लब लिए पहला हुण मेरियां, अखां आंखें लब्बे पहला था। ठीक है जी ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी प्रोग्राम विच।
1: शुक्रिया शुक्रिया सर।
0: जी थैंक यू। लो जी, इन्होंने हुण सानू एक टास्क देता है कि आंखें फिल्म का जो गाना है, कभी कभी। मैं बहुत बुरा करना वा, मैनू इदा दसन की या इदा देखने की कोई लोड़ नहीं। ठीक है, तो प्रोग्राम अगे बढ़ते हैं तो इंजॉय करिए लता मंगेशकर जी की आवाज़ खूबसूरत गीत।

क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच जी, रामलू भाई जी। अरे वाह वाह, क्या बात, पूरे सोर लास्ट वाले भी ये करके तुसी लाइन है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रामलू भाई जी, बड़ा चंगा लगा तुहाडे नाल गलबात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी दोस्तों, शाम दे पूरे 4:47 जिहड़े ने हो चुके ने, ते प्रोग्राम विच मैनूं हुण तुसी इजाज़त दो, क्योंकि अगले जिहड़े दोस्त ने 5 बजे जिहड़े युवाणी प्रोग्राम करनगे, उह दोस्त कह लो मेरे स्टूडेंट कह लो, उह जिहड़े ने उह पहुंच चुके ने, ते उह तुसी उहनां नाल चंगी तरह प्रोग्राम इंजॉय करोगे। लो जी फिलहाल इंजॉय करो इस प्रोग्राम दा आखरी गीत। एंड थैंक यू सो मच टू एवरीवन जिहड़ा ने प्रोग्राम दे विच फोन मिलाया, ते बड़े अलग अलग तरह के होके लाए, प्रोग्राम नूं बहुत रंगीन बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: वाह क्या बात है सरबजीत, मैं कहनी शो दे विच तुसी जा नहीं पा दित्ती है। तो मैंने लगदा तुसी कह रहे सीगे ना नुसरत फतेह अली खान तुसी बहुत ज्यादा सराहंदे हो, वो पसंद करदे हो, ते
1: जी
0: कितने ना कितने वो भी तुहाडी आवाज सुन के ना तुहानू ब्लेसिंग्स दे रहे होणगे इस टाइम ते।
1: जी बिल्कुल
0: ते जिवें कि तुसी हुणे दस्सिया कि तुहानू सूफी गाण दा बहुत शौक है ना,
1: हाँ जी
0: पर अजकल दी जनरेशन दे जिवें कि यंगिस्तान दा सेगमेंट है, तो मैनूं लगदा इह सवाल करना ही चाहीदा है कि जनरेशन जिहड़ी है ना यूथ दी,
1: जी
0: ओह अजकल दा यूथ बहुत ज्यादा सुनदा है पॉप म्यूजिक,
1: जी जी
0: तड़ाके
1: बिल्कुल
0: फड़ाके वाले
1: जी
0: गीत।
1: जी बिल्कुल।
0: तुहाडा रुझान सूफी वाल किवें आ?
1: देखो जी, जो सूफी म्यूजिक आ ना, वो रूह दी खुराक आ,
0: जी
1: क्योंकि जो आप कोई सूफी चीज़ गाने वो दिल नू छूंदी, एक इमोशन आ। मैं शुरू तो सूफी गाना, हर एक चीज़ अच्छी आ, हर एक दी अपनी वाइब हुंदी आ,
0: हाँ जी
1: पर मैं सूफी गाना वा तो मैनू उही वधिया लगता है ज़्यादा। अच्छा
0: बिल्कुल बहुत वधिया।
1: जी
0: इन्नी मिठी आवाज़ है तुहाडी, की तुहाडी फैमिली दे विच भी कोई गांदा है?
1: जी नहीं, मैं पहली पीढ़ी ही हाँ जो गाना मैं शुरू किया है। मेरे घर के सारे पुलिसिए ही है, सारे पंजाब पुलिस विच, मेरे
0: जी
1: मेरे चाचा जी दादा जी सारे पंजाब पुलिस विच सीगे, मैं ही स्टार्ट किया वा गाना।
0: सो कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ते फैमिली दी सपोर्ट किन्नी कर रही है सरबजीत?
1: फैमिली दी सपोर्ट देखो जी, मेरे मम्मी तो है नहीं आ, मेरे दादी जी ने मैनू वड्डा किया हुण तक जो पालिया पोसा उन्हां ने,
0: हाँ
1: सो
0: जी
1: मेरी दादी जी दी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रही आ,
0: जी
1: ते पापा दी भी बहुत सपोर्ट रही आ। मेरे पापा नू मजबूरियां करके ऑटो ड्राइवर ने,
0: हाँ जी
1: सो वो अपने काम च बिजी रहिंदे, वो इन्ना टाइम नहीं दे पाते मैनू मेरे म्यूजिक नू, है ना,
0: जी
1: क्योंकि उन्हां उत्ते जिम्मेदारी आ बहुत वड्डी,
0: बिल्कुल
1: सारा घर दा उही देखदे आ।
0: बिल्कुल
1: ते बाकी जदों कितें मैं शो वगैरह ते जाना होवां जां कितें भी, वो मैनू भेजदे आ कि जा तू जा, असीं तेरे नाल आ।
0: ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ?
1: ਜੀ ਮੈਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾੜੀ ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ,
0: ਬਿਲਕੁਲ,
1: ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
0: ਤੇ ਫੇਵਰੇਟ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜੋਨਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
1: ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜੋਨਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਫੇਵਰੇਟ ਸੂਫੀ ਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
0: ਤੇ ਸੂਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋਨਰ 'ਚ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ?
1: ਸੂਫੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਗਾ ਲੈਂਦਾ।
0: ਤੇ ਜੇਕਰ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ।

0: गई है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड ने वो अपने रिक्रूटमेंट्स अपने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म्स ने वो फिल कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड वालों ALP की भर्ती जी जारी की गई है। इस तकरीबन 11,000 तो वध पोस्टा का नोटिफिकेशन जारी होया है। जिहड़ी इस दी इनू ऑनलाइन अप्लाई करन दी डेट आ उह 15 मई तो शुरू हो चुकी आ। ते तुसी इस दी इंडियन रेलवे दी ऑफिशियल वैबसाइट ते जाके इस दे फॉर्म नू फिल कर सकदे हो। ते क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी उत्थे तुहानू नज़र आ जाएगी।
0: जी बिल्कुल, मैंने लगता है कि तुसी अगर अपना अप्लाई करना चाहो तो जो भी तुहानू इनफॉर्मेशन है वो तुसी जाके अपने इंटरनेट तो सर्च कर सकते हो। तो तुसी उत्थे जाके अपनी डेट्स वगैरह वेरीफाई करके सारे डॉक्यूमेंट्स की जानकारी लेके तुसी अपनी जॉब्स वास्ते या उन्हां दी जो एप्लीकेशन डेट्स हैं उन्हां एप्लीकेशन हैं उन्होंने फिल करके तुसी चेक कर सकते हो। तो जो भी लास्ट डेट्स होंगी उन्होंने प्रॉपर वेरीफाई करके तुसी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना। नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट है वह है PSPCL वालों। PSPCL वालों इन्हां इस विभाग च जूनियर इंजीनियर इलैक्ट्रिकल दियां 622 असामियां लई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। ये जो योग्यता है इसकी उम्मीदवारों को इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मंगी गई है कि जो भी लोगों को जो अपने डिप्लोमाज हैं या डिग्रीज हैं वो इन सैक्टर्स के लाजमी होने चाहिए ने। इस दी उम्र 18 to 37 साल रखी गई है। तो अर्जियां की जिहड़ी मिति सी एप्लीकेशन जी दो स्टार्ट हुई सी उन्होंने जो फॉर्म है वो तुसी फिल कर सकते हो।

0: जो नेक्स्ट असी रिक्रूटमेंट्स लैके आए हैं वह है सी टैट एग्जाम दियाँ। जिन्हें भी लोग अपने एजुकेशन फील्ड के अपनी जॉब्स वास्ते जाना चाहते हैं वो सी टैट का एग्जाम की जो डेट्स हैं वो निकल गए हैं, तो उनकी जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म करने की लास्ट डेट 10 जून दी गई है, जो 10 जून तक तुम अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स ने फिल कर सकते हो तो अपनी सी टैट के एग्जाम वास्ते अप्लाई कर सकते हो।
1: तो दोस्तों, पंजाब सब ऑर्डिनेट सर्विसिज सिलेक्शन बोर्ड वैटरनरी इंस्पैक्टर दियाँ रिक्वायरमेंट जिहड़ियां आ वह चल रही ने, जिस दे विच कुल पोस्टा 150 है, तो इस दे विच क्वालिफिकेशन वैटरनरी साइंस डिप्लोमा मंगी गई आ, उम्र 18 to 37 साल, तो इस दे विच जिहड़ा काम होगा पशुआं दी सेहत अते वैटरनरी डिपार्टमेंट विच ड्यूटी होवेगी। तो इस नूं अप्लाई करन दी आखिरी जिहड़ी तारीख आ वह 25 मई 2026 आ। तो इस तो इलावा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच भी नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट चल रही ने, जिस दे विच टोटल 41 पोस्टा ने, तो पोस्ट विच क्लर्क असिस्टेंट टेक्नीशियल स्टाफ आदि दियां पोस्टा जारी की गई ने, जिस नूं अप्लाई करन दी आखिरी मिति 28 मई 2026 आ।
0: मैं लगता ललित आप बहुत गल्लां कर रही हैं, आप बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स दस दी हैं असी अपने लिसनर्स नूं, तुसी सिंगिंग दे करियर विच किवें जा सकदे हो या की जो परेशानियां ने वो आपां नूं फेस करनियां पै सकदियां ने उन्हां बारे दसता, मतलब आप बहुत कुछ खास गल्लां, अज दा दिन खास क्यों मनाया जांदा असी उन्दे बारे भी अपनी जानकारी देती, पर मैनूं लगता जो मेन चीज़ है कि इन्नी गर्मी पै

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन गुड इवनिंग दोस्तों। शाम के 6:01 हो चुके हैं, FM रेनबो ते मैं एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं जी। जी दोस्तों, शाम के हम 6 बज चुके हैं, मैं लेके हाजिर हो चुका जी प्रोग्राम लव यू जिंदगी जी। इस प्रोग्राम में तुम इंजॉय करोगे अपने दोस्त मोहित रूपल 102.7 MHz ते। सो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं बड़े ही प्यारे एक बढ़िया जी एनर्जेटिक गीत के साथ।

जी दोस्तों, शाम दे 6:30 हो चुके हैं। एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जी, लव यू जिंदगी, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिथे रेगुलर असी ऐसा डोज तुहानू एक ऐसी मेडिसिन कह लो कि ऐसी खुराक जिहड़ी है देने की कोशिश करते हैं जिहदे नाल तुसी पॉजिटिव रह सको। क्योंकि जनाब इदा है कि जिवें सुबह दोपहर शाम नू असी खाना खाने हैं क्योंकि शरीरिक लोड है, सानू फिजिकल लोड है कि भाई खाना खावांगे एनर्जी आएगी तो आपां काम जिहड़े ने अलग अलग कर सकते हैं। सिमिलरली कामकाज करन दे लई हुंदा की है कि सानू ना साडा दिमाग भी साडे कंट्रोल च होना चाहिए, तो दिमाग भी ना पूरा एकदम एक्टिव मोड से होना चाहिए। यह नहीं है कि बस तुसी उत्थे बैठे हो, बस कंप्यूटर ते टक टक टक कुछ भी टाइप करी जा रहे हो, काम करी जा रहे हो। एक्चुअल दे विच थोनू जिहड़ी उत्थे प्रेजेंस तुहाडी जिहड़ी होनी चाहिए, यानी कि तुसी दिलो वो काम करो, दिलो तां ही करोगे तुसी अगर काम जिहड़ा इंजॉय करदे होवोगे। तो इंजॉय करन दे लई तुहानू जिहड़ियां अलग अलग चीज़ां दी टेंशन जिहड़ी है वो तुहानू अपनी छड्डनी पएगी, एंड उहनू छड्डन दे लई अपना दिल किते होर लाउणा पएगा, एंड उहनू दिल नू किते लाउण दे लई तुसी चंगे चंगे गाने जिहड़े सुण सकदे हो, या फिर जिहड़ियां गल्लां तुहाडे दिमाग च रेगूलर चल रहीयां ने एक बार तुसी उहदे बारे गल कर ही लो। क्योंकि जे गल करके उहदा हल हुंदा है तां गल क्यों नहीं कीती हुण तक, तो जे गल करके हल नहीं भी हो रहा तो फिर उहदी टेंशन भी क्यों लैनी, यानी कि उह चीज़ शायद तुहाडे हथ विच नहीं है। जिहड़ी चीज़ तुहाडे हथ विच नहीं है तो फिर टेंशन लै लै के अपनी सेहत क्यों खराब करनी। तुसीं कहोगे बई किड्डियां सोहणियां डूंघियां गल्लां 2-2.5 मिनट विच करदियां, बई जनाब इह तां पूरा प्रोग्राम हजे इदां लंघना है, तुसीं तां हजे ट्रेलर वेख्या जे।

यू सो एंजॉय कर रहे प्रोग्राम लव यू जिंदगी। वैसे अपन ना बहुत सारिया मोटिवेशन की गल्ला करते हैं, पर कई बार ना सानू जी चीज़ा साढ़े आले दुआले होंगे आप शुक्रिया नहीं कर रहे होंगे उस परमात्मा का, उस खुदा का, उस वाहेगुरु का, उस राम का, उस गॉड का, कि बई अगर मेरा भरा है मेरे को, मेरी भैन है, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, सो बी थैंकफुल टू यू नो इन्हों रिश्तिया के लिए भी। बिकॉज होंगे की है जिन्हों लोगों को नहीं है, एक प्यासे नूं पता हुंदा कि बई पानी की कीमत की है, पानी उहदे लई किन्नी कि जरूरी है। असीं तो बड़े आराम नाल साफ पानी पीने हां, पर तुसीं अगर ऐसे शहर, एक ऐसे इलाके, एक ऐसे कंट्री, ऐसे देश चले जाओ जिथे तक देखो कि वह बड़ा गंदा पानी, काला पानी पीण नूं मजबूर हो जाता है, पर असीं जिथे इन्ना साफ पानी भी है कि असीं थोड़ा पी के सारा रोड़ दिंदे हां। सो निक्की निक्की चीज़ दे जदों आपां यू नो ग्रेटफुल होवांगे, उहदी कदर करांगे, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन लेट वाली गुड इवनिंग दोस्तों, जिंदगी जिंदाबाद। एक बार फिर स्वागत है जी प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच, एंड इस प्रोग्राम नूं तुसी इंजॉय कर रहे हो अपने दोस्त मोहित रुबल दे नाल। समा हो चुका है शाम दे 6:31। तो दोस्तों गल इदां है कि अगर तुसी ना मान लो किसी भी कारण तो है ना खुश हो, बड़े खुश हो, एंड तुसी हर एक नाल बड़े हस के गलबात कर रहे हो, कोई लंघ रहा उसनूं बड़े मिठे जी सत श्री अकाल नमस्ते आदाब बुला रहे हो, ते कोई होर लंघ रहा फिर उन्हों भी बड़ा समाइल पास कर रहे हो, तो कोई तुहानू आ के ना पूछ लेगा यार बड़ा खुश हो कि गल कर रहे हैं की गल हुई। नहीं, इत्थे तां पहलां मैं सवाल पूछना चाहवांगा कि जरूरी है कोई गल होएगी तां ही तुसी खुश होवोगे? तुसी वैसे भी तां खुश हो सकदे हो, क्योंकि असी ना एक धारणा जी बना ली, एक माइंड सैटअप बना लिया कि बई नहीं कोई गल होई कि खुशी वाली गल होएगी तो मैं हसांगा, नहीं तो मैं जी मैं मूँह अपना ना सड़ियल ही रखांगा। नहीं नहीं, हर बात में नहीं, ऐसा नहीं करन दी लोड़। तुसी खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि यह गल मैं बड़ी बारी आखदा वा कि हैप्पीनैस इज अ चॉइस। तुसी जिन्ना खुश रहने की कोशिश करोगे, खुश रहोगे या दूजे नूं खुश रखने की कोशिश करोगे, तो यानी कि यू आर डूइंग अ गुड थिंग, राइट? तो बस फिर कुदरत भी तुहाडे लई मेहरबान होएगी, तुसी चंगा चंगा मैनीफेस्ट कर रहे हो, चंगी चंगी स्माइल कर रहे हो, तो वो सेम एनर्जीज जिहड़ियां ने, पॉजिटिव एनर्जीज जिहड़ियां ने, वो

जी दोस्तों, एंजॉय करें प्रोग्राम लव यू जिंदगी। क्लब प्रोग्राम नहीं एंजॉय करना, जिंदगी भी एंजॉय करनी है। जो कि आज मैं पूरे प्रोग्राम दे विच गल कर रहे हैं कि असी एक तो अपने आप नूं हमेशा मोटिवेटेड रखिए, खुश रखिए, तो दूजे नूं भी खुश करन दी कोशिश करिए। वैसे तो इस प्रोग्राम दे विच असी कोई फोन कॉल या मैसेज नहीं लेंदे, पर जिवें कि मैं गाने तो पहला मैं जिक्र कर रहा सीगा कि आपां ना हर चीज़ दे लई ना शुक्रिया करिए उस परमात्मा दा। आपां ग्रेटफुल होइए कि साडे कोल आ चीज़ है, असी शुक्रिया करिए कि साडे कोल आ चीज़ है। सो जेकर तुसीं भी प्रोग्राम सुन रहे हो तो बस मेरे को आइडिया हो जूगा कि किन्ने क दोस्त जिहड़े ने उह प्रोग्राम वाकई सुन रहे ने ते वाकई इस गल्लां ते विश्वास करदे ने। सो जो तां वाकई इस गल्लां ते विश्वास करदे ने कि सानूं निक्की निक्की की चीज़ दा शुक्रिया अदा करना चाहिए उस परमात्मा का, क्योंकि हो सकता है किसी होर कोल वो चीज़ भी ना हो, किसी को हाथ ना हो, किसी को पैर ना हो, किसी को पैसे ना हो, किसी को छत ना हो, किसी को रिश्तेदार ना हो, किसी को चंगे दोस्त ना हो। मतलब हर एक चीज़ लिए तुसी थैंकफुल हो सकते हो, क्योंकि होर लोगों बड़े लोगों तो तुसी वाक हो, बड़े लोगों को तुसी चंगे हो। तो तुसी अगर किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, तो साढ़े व्हाट्सएप पर ना मैसेज भेजो कि यस आई एम, है ना, कि मैं भी हाँ, कुछ भी लेके भेज दो कि हाँ भी मैं भी, बस मैं तारा मैसेज पढ़ के मैनू एक सुकून हो जाएगा कि हाँ जो थॉट मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा, जो गल मैं आखण की कोशिश कर रहा, वो थोड़े तक पहुँच रहा, एंड तुसी भी उस गल नाल बिल्कुल कह लो कि वाकिफ भी हो, एंड उस ते तुसी सहमत।

जी, एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम लव यू जिंदगी दे विच। एंड मैं थोड़ा दोस्त मोहित बोल रहा हूँ। अज असी गल कर रहे हैं कि किवें तुसी पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, दूजे नूं खुश रहने की कोशिश करनी है। सो जिवें कि मैं दस्या कि तुसी अगर खुश होकर सारे नूं सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड मॉर्निंग, नमस्कार बुलाओगे तो हो सकता है कि अगला बंदा ना बहुत ज़्यादा टेंशन च होवे, बड़ी ज़्यादा नैगेटिव एनर्जी दे नाल होवे। पर जदों तुसी रैंडमली ही उसनूं बड़े प्यार दे नाल बुलाओगे ना, तो वह भी तुहानू ना प्यार ना बुलाएगा। नैचुरली वह गुस्सा कद तो करेगा, क्योंकि तुसी कड़ा कुछ गलत किया। तुसी देखो कि तुसी किवें किसी एक गुस्से वाले बंदे को प्यार नाल अगर कुछ बुला लिया, तो ऑटोमैटिकली तुसी उहदा जिहड़ा नेचर है उहदा एक इंस्टेंट दे लई भावें उहदा जिहड़ा सुभाव है तुसी थोड़ा जिहा चेंज कर दिता। सो वह भी सोचेगा कि यार मैं हुणे गुस्से च सीगा, हुणे मैं प्यार नाल गल कर ली, तो मैं प्यार नाल भी तो गल कर सकदा वां। मैनू की लोड़ है इन्ना ज़्यादा तत्ता रहण दी, मैनू की लोड़ इन्ना ज़्यादा टेंशन जी लैण दी। सो खुश रहो, खुश रहने की कोशिश करते रहो। एंड मैं इंतजार कर रहा थोड़े मैसेज का कि भाई तुम किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो। तुम सू वट्सअप लिख के भेजो 9855101027। किसी भी चीज़ लिए ग्रेटफुल हो सकते हो कि भाई मेरे घर ना साइकिल खड़ी है, मैं बड़ी खुशी है। तुम साइकिल ही ग्रेटफुल हो सकते हो, किसी भी छोटी तो छोटी वड्डी तो वड्डी चीज़ जिस दे लई तुसी ग्रेटफुल अपने आप को महसूस करते हो। साडा वट्सअप नंबर 9855101027 दे उपर सू मैसेज करके भेज सकते हो।

0: जी गाने दे बोल ने गिद्दा पा जट्टीए मजाजा पट्टी है ना। मतलब जिवें कि मैं हुणे प्रोग्राम दे विच गल कर ही रहा सीगा कि तुहानूं हरदम खुश रहण दी कोशिश करदे रहना चाहिए। एंड वाकई इदां ही एंट्री मारी है साडे अगले दोस्त यानी कि राजवीर ने जिन्हां ने अगला प्रोग्राम करना है ते नचदी हुई कुड़ी आई है। मैं पुछया का तू खुश है ते कहिंदी सर खुश रहण दी कोई वजह होनी चाहिए है, बंदा वैसे खुश रह सकदा है। हाँ सो मुफ्त दवाई है जो कि तुसी अपने आप नूं भी ते दे रहे हो बाकी तुसी सोसाइटी विच भी फैला रहे हो। सो खुश रहो खुश रखने की कोशिश करते रहो। सो आई होप कि तुसी अज्ज दा प्रोग्राम मेरे नाल यानी कि मोहित रूपा नाल खूब इंजॉय किया होएगा एंड आई नो तुसी किया। सो ठीक है जी बाकी हैंड ओवर करन जा रहे हैं जी राजवीर ने क्योंकि राजवीर पूरी तैयार है अपना प्रोग्राम फिल्मी दुनिया एंड होर भी जो अज्ज दे प्रोग्राम ने लड़ी सार। सो मैनू दवो इजाजत इस गीत दे नाल।
1: हाँ जी दोस्तों ताडे सामने पेश करन जा रहे हैं मिस पूजा दा नवा गीत साडे यूके दे बहुत

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवावा नु चीर दे होया, पलांच तेरे वीरा तो कोहां दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुन दे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो, बाकी सब कुछ भुला दे।

सिर्फ इन्ना ही नहीं सी, हैप्पी राय कोटी ने अपनी किस्मत फिल्मा दे विच भी अजमाई। हैप्पी राय कोटी ने कई पंजाबी फिल्मों के भी गीत लिखे ते गाए। उन्होंने गीतों के पंजाब की मिट्टी की खुशबू, सच्चे जज्बात अते लोकां दी असली जिंदगी की झलक भी दिखाई। हैप्पी राय कोटी की सब तो वड्डी खास गल यह है कि उन्होंने गीत किसी भी उम्र के इंसान को अपने नाल जोड़ लेंदे ने। उह ना तो बहुत वड्डे शब्द वरतदे हन अते ना ही दिखावा करदे हन, उह दिल की गल दिल तक पहुँचा देंदे हन। सो यह सी एक ऐसे कलाकार की कहानी जिन्हां ने संघर्ष तो सफलता तक का सफर किया, मेहनत की लिखत नाल तय किया कि हैप्पी राय कोटी एवें नहीं बनिया। हैप्पी नाम तो सारे रख लेंदे ने, लेकिन उस नाम नूं पछाण दवाउणी किसे किसे दे हाथ हुंदा। ते उन्हां दे गीत अज वी लोकां दे दिलां दी धड़कन बने हुए ने। ते हुण समां है इक उन्हां दा ही सुपरहिट गीत सुणन दा।

दूसरा गीत आंदा है जिसका साथ ही है भगवान, तीसरा गीत आंदा है कोई आता है कोई जाता है, ते चौथा गीत आंदा है बसाले मन मंदिर में राम। यानी कि इन्होंने रोमांटिक या फिर ऐसी कह रिलीजियस गीत भी सानू दिते। फिर उस तो बाद मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले और तलत महमूद ने इन्हों की कंपोजिशन बहुत ज़्यादा साथ दिता। जिन्हें भी गीत इन्होंने कंपोज किए ने सब तो पहला नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का आता, फिर आशा भोंसले, फिर उस तो बाद तलत महमूद का आता। इन्होंने डुएट भी करवाए ने ते कि ना कि कोरस भी करवाया। एस पी कला की सब तो वड्डी खासियत यह रही कि अपने गीतों के राही सीधा लोगों के दिलों के नाल जुड़ते हैं। उन्होंने शब्दों के सादगी होने के बावजूद भी डूंगी भावना होंगी है, तो धार्मिक भावनात्मक गीतों के उन्होंने लिखत ने बॉलीवुड में एक विलक्षण ही रंग दिता। सुनते हैं उन्होंने ही द्वारा कंपोज किया हुआ यह गीत।

0: ਐਫਐਮ ਐਂਡ 102 ਸ਼੍ਰੇਣੀ 7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅੱਜ ਰਾਜਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨਫੋ ਟਾਈਮਸ। ਜੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਅੰਗਮਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਰੀਲ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਇਲੋਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ।
1: लड़कियों, झूठ बोला गया हमसे स्टार्टिंग से। जो भी हमें जो मार्केट किया गया था ना कि कार घूमना, गाड़ी चलाना, बाइक सीखना, आवारागर्दी करना, ये सारे लड़कों का काम है, सब झूठ है। ये मुझे भी पहले बहुत अजीब लगता था, लोग बहुत बकवास करते थे, अभी मैं रील डालूंगी अभी लड़की ही आएंगे फालतू बकवास करने। पर ट्रस्ट मी, किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें करना है करो। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट थोड़ा ट्राई करो, नहीं करेंगे अलाउ पेरेंट्स, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलो, थोड़ी लड़ाई करो, घर से निकलो, ऐसा दिमाग खुलता है, ऐसा लाइफ के बारे में पता चलता है। इतनी भी किताबें पढ़ लो, जितना भी स्कूल चले जाओ, कुछ नहीं तुम्हें सिखाएगा जितना तुम्हें ट्रैवल करना सिखाएगा। पुश योर लिमिट्स, एक लाइफ मिलती है, उसमें नहीं किया तो फिर क्या किया।
0: जी हाँ, कहने कि लड़कियों घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि ज़िंदगी अक्सर में है क्या, ज़िंदगी की है उसके बारे पता था ता ही लगेगा जिकर घर तो बाहर पैर रखेंगे। लेकिन कोई गल नहीं, इस पूरे आर दे विच इदा दे ही बहुत सारे चंक्स आउणगे हर एक सोंग तो बाद, ते सोंग भी रिलेटेड होएगा। जेकर तुसीं तैयार हो इस पूरे आर दे विच अपनी धुन बदलन दे लई, तां जुड़े रहो मेरे यानी कि आर जे राजवीर दे नाल। फिलहाल सुनदे हां ये गीत।

व्हाट्सएप दे उत्ते अगली फरमाइश आई है, लिखा होया है कि फिल्म पगला कहीं का गीत तुम मुझे यू भुला जलालाबाद वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, तिशानी और निमत आहूजा। उस तो बाद अगले सानू लिखत रिक्वेस्ट आई है कि अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधुन गायक, इन्होंने कहा है कि कोई भी तुसी सानू गीत सुनवा दियो। अगे सानू आई है फरमाइश के करणवीर हाउस बुचो कौंचिया बठिंडा पंजाब से लिखते हैं, नमस्कार जी, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, कहिंदे कि कोई भी गीत सानू सुनवा दिओ।

कहते हैं कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर। वो खोकर ऐसे हमें देखते हैं कि खुद ही बेवफा निकले।

वसीम बरेलवी साहब लिखते हैं कि चला है सिलसिला कैसा ये रातों को मनाने का, तुम्हें हक दे दिया किसने दियों के दिल दुखाने का, इरादा छोड़िए अपनी हदों से दूर जाने का, जमाना है जमाने की निगाहों में ना आने का, कहाँ की दोस्ती किन दोस्तों की बात करते हो मियाँ, दुश्मन नहीं मिलता यहाँ जमाने का, निगाहों में कोई भी दूसरा चेहरा नहीं आया, भरोसा ही कुछ ऐसा था तुम्हारे लौट आने का, ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक, समंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का।

चुप रहिए के शोर मचाइए, समझ नहीं आंदी किधर जाइए, तेरी याद च सड़कां उत्ते तुर तुर यार थकेड़े लाइए।